अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 4 जून 2026, सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

सात बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 7:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR गौतम के साथ। 8 बजे ऋचा वर्मा रहेंगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तराने गाने नए पुराने गौतम के साथ। 10 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 10:05 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम का हिमानी दत्ता के साथ आप सुनेंगे। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर पवित्र रावत लेकर आपके साथ रहेंगी प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स।

12 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का और हिमानी दत्ता के साथ आप वेस्टर्न म्यूजिक का मजा लेंगे 12:05 पर। 1 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार होगा 1:05 पर। बबीता रावत के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। 2 बजे प्रोग्राम आशियाना के साथ एफएम शाहिद

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की

0: में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृह मंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि जितनों ने इस धरती पर

जन्म लिया, एक दिन उन सब की मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु पश्चात हमारा ये शरीर मिट्टी से जो बना था वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मृत्यु पश्चात हमारी आत्मा अधोलोक में रहकर न्याय के दिन का इंतजार करेगी, जहां हर मनुष्य का न्याय उसके अच्छे और बुरे कार्यों का किया जाएगा और उसके पश्चात ही स्वर्ग या नरक का फैसला होगा।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि इस जीवन में हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य और हमारे दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु को पसंद आए और उसकी कृपा और उसकी आशीषें तुम पर

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि गुनाहों से पश्चाताप करने का मौका इस संसार में रहते ही प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वक्त रहते अपने गुनाहों को छोड़कर प्रभु से माफी मांगें और एक अच्छा जीवन जब तक हमारी सांसें चल रही हैं गुजारते रहें।

दोस्तों, गुनाहों से मुक्ति प्राप्त होते ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। नफरत, कड़वाहट, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब प्यार और भलाई में बदल जाती हैं। दोस्तों, प्रभु का अनुग्रह और कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम लेते हैं आपसे विदा। लेकिन दोस्तों, आप हमें मैसेज या फोन करके ये अवश्य बताएं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

AIRF रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रिचा आपके साथ और प्रोग्राम का नाम है सुप्रभात। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है सुप्रभात और आज इस कार्यक्रम में क्या बात करने वाले हैं हम या क्या होने वाला है खास, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तो आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सपनों की, उन्हीं सपनों की जिनसे

का अब वक्त आ गया है और आपको हो जाना है तैयार उन्हें पूरे करने के लिए। जब हम ठान लेते हैं ना कि सपनों को पूरा करना है, तो देखिए ये जो पूरी कायनात है ना, वो जुट जाती है आपके सपनों को साकार करने के लिए। और अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आज की कहानी आपको ज़रूर यकीन दिला देगी। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

जहाँ सपने वहाँ आप भी पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि धीमे हौले करके जैसे जैसे सपनों के की जो वाइब्रेशंस हैं वो आप यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसे वैसे आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरा यूनिवर्स जुट जाता है। कभी देखा है जो आप चाहते हैं वो आपकी आंखों के सामने खड़ा होता है, कभी जैसे दिल से याद करो एकदम से उसका कॉल आ जाता है। ठीक ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसी वाइब्रेशंस आप देते हैं वैसे आपको मिलने लगती हैं। ठीक किसी तरह से जैसे आप सपने देखते हैं धीमे धीमे साकार होने लगते हैं, लेकिन उन सपनों पर हमें विश्वास भी करना होता है, मान के चलना होता है कि जो कुछ हमारे ख्वाबों में है वो ज़रूर एक ना एक दिन सच हो जाएगा। तो ज़रा सोच कर देखिए कि आप अगर अपने सपनों को साकार करने की राह पर निकल चुके हैं तो कामयाबी मिलेगी, यही सोचकर आगे बढ़िए। कोई भी मन में नेगेटिव थॉट आने ही मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ साथ आप ही के लिए तो काम कर रहा है। मैं हूँ ऋचा, आपके साथ प्रोग्राम सुप्रभात सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सपने देखना तो बड़ा ही आसान है। हम सभी अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लेते हैं कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है, सोच लेते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन जब राह में मुश्किलें आती हैं तो उस सपने को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, सोचते हैं कोई आसान राह चुनी जाए, इसके पीछे क्यों मेहनत करें। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक ना एक दिन जब ये जीवन ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त उस क्षण याद आता है कि हमने अपने सारे सपनों को तो यूं ही जाने दिया, प्रयास ही नहीं किया उन्हें पाने का। और कुछ ऐसा ही कहती हुई हमारी ये कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उससे प्यार करते थे, उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सब कोई उसका रिस्पेक्ट करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। जीवन में सफलता प्राप्ति का सपना उसने देखा, लेकिन प्रयास नहीं करना था कुछ भी। दिन रात तो वो मेहनत करने लगा, लेकिन असफलता जैसे ही उसके हाथ लगती वैसे ही वो निराश हो जाता। उसका पूरा जीवन चक्र ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकल कर उसका जीवन काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में बहुत सुकर्म किए थे, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और देवदूत जो थे वो उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। अब स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। देवदूत से बोला, भला ये स्थान कौन सा है? ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया गया है, अब से तुम यहीं रहोगे, देवदूत ने कहा। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। घर तो बड़ा शानदार था, इतना शानदार घर तो उसने अपने जीवन में ही कभी नहीं देखा। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया, एक एक करके उसे सारे कक्ष दिखाए। सारे कमरे बहुत सुंदर थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसके सामने लिखा हुआ था स्वप्न कक्ष। और जैसे ही उस कमरे के अंदर वो गया, अंदर देख कर हैरान हो गया। ये स्वप्न कक्ष और ये सारी चीजें देखकर बड़ा हैरान हुआ और देखा कि जिन जिन चीजों को पाने के लिए वो अपने सपने देख रहा था, स्वप्न कक्ष में वो सभी चीजें छोटे छोटे मॉडल्स में रखी हुई थी। सभी के छोटे छोटे प्रतिरूप थे, जैसे कि उसका आलीशान घर, उसकी ड्रीम कार, जो उसे पद चाहिए था बिल्कुल उसी तरह सजा तजा वो खुद एक छोटे से मूर्त रूप में वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ें जिनका उसने कभी सपना देखा था, वो सभी छोटे छोटे स्टैचूज के रूप में, मॉडल्स के रूप में वहाँ पर रखी हुई थी। और वो सोचने लगा कि ओ कितना खूबसूरत है, ये दुनिया ही अलग है ना, आखिर स्वर्ग में आकर मैं इन्हें देख रहा हूँ, इन्हें महसूस कर रहा हूँ तो इतनी खुशी हो रही है। अगर नीचे पा लिया होता तो जाने कितना खुश होता। और फिर उसने देवदूत की तरफ जा देख कर कहा कि भला ये सब कहाँ है, ये सब तो

वहाँ नीचे धरती पर देखा था इन सब का को पाने का सपना। और देवदूत ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे आप सभी को बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। देवदूत ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरे होने की कामना भी करता है, लेकिन कुछ ही सपने के लिए वह बहुत ही गंभीर होता है, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करते करते मनुष्य ही अपने सपनों का साथ छोड़ देता है, तो फिर ईश्वर और ब्रह्मांड को भी उन सपनों को छोड़ना पड़ता है। असफलता प्राप्ति से हताश होकर कई बार दृढ़ निश्चय की कमी से मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब वो सपने पूरे होने ही वाले होते हैं, और वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप में रखे हुए हैं तुम्हारे सामने, और तुम्हारे सपने भी यहाँ पर इसी रूप में हैं। अगर तुमने भी अंत समय तक हार न मानी होती तो तुम इन्हें अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। वो लड़का अपने जीवन की गलती को समझ गया और समझ आ गया कि मृत्यु पश्चात अब कुछ भी नहीं हो सकता, समय बीत चुका है। तो दोस्तों, किसी भी सपने को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस दिशा में काम करते रहें। एक बार डिसाइड कर लिया तो बस कर लिया, जिद्दी बन जाइए। चाहे कितनी मुश्किल आए, चाहे कितनी बार भी फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन सपना पूरा करना है, क्योंकि उसी प्रयास में लगातार काम करना है। लेकिन समय निकल जाएगा और आपको मौका ही नहीं मिलेगा शुरू करने का। अब कब करना है, कैसे करना है, ये सोचने की बजाय आज अभी इसी शुभ मुहूर्त से प्लान कीजिए कि कैसे आप अपने सपनों पे आगे बढ़ेंगे। आज ही है तो कर दीजिए शुभारंभ अपने सपनों को पूरा करने का। मैं हूँ रिचा आपके साथ, प्रोग्राम सुप्रभात।

शुभारंभ करने का मुहूर्त आज ही है। और देखिए जी, अपर्णा भट्ट कितनी खूबसूरत शब्दों में कहती हैं कि कुछ सपने जो पंख दिए, कुछ सपने जो पंख दिए वो खुले आसमान में उड़ने लगे, बादलों की छाँव मिली तो कभी तारों की महफिल सजी, नरम नरम हवा के पालनों में पलने लगे कोरे कोरे ये सपने, रंगों से खेलने लगे, सुनहरी धूप की धागों से एक नया जहाँ बुनते हुए बिखरे बिखरे ये सपने अपने अपने आप में सिमटने लगे, लंबी लंबी राहों पर नन्हे नन्हे कुछ कदम मासूम ये सपने मंजिल की तलाश में चल पड़े। दीपक की लौ में सूरज की रोशनी नहीं मिली, दीपक की लौ में सूरज की रोशनी नहीं मिली तो थक कर ये सपने उसी की लौ में जलने लगे, वक्त आगे निकल गया, सपने पीछे छूट गए, कुछ ठहर गए, कुछ टूट गए, कुछ खुद पर ही हंसने लगे, जिंदगी के दांव में खुद जिंदगी को हार के अब इन अधूरे सपनों के सौदे होने लगे, चलते चलते खो गए, अपनी ही धड़कन से दूर हो गए, पीछे मुड़े तो दिखा कहानी बनके बिकता अपना ही चेहरा, फिर भी नहीं रुका सांसों और धड़कनों का यह सुस्त कारवां, क्योंकि टिमटिमा रहा था अभी भी एक सपना सितारा बनके। जब सपने होते हैं तो ये दिल भी जिद्दी हो जाता है, एक जोश भरा रहता है कि अपने सपनों को साकार करना है, पूरा करना है। और ज़रा सोच कर देखिए कि आज इस विश्व में जितने भी महान लोग हैं, अगर सचिन ने सपना नहीं देखा होता एक महान क्रिकेटर बनने का, अगर विराट ने नहीं सोचा होता कि वो आगे जाकर पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ेंगे, अगर नहीं सोचा होता APJ अब्दुल कलाम ने कि वो भारत की अपनी खुद की मिसाइल बनाएंगे, ये न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता है, जिन्होंने समुन्द्र की गहराई नापने का भी सोच लिया। कुछ ऐसे भी तो सपने देखे ही गए होंगे, शुरुआत हुई ही होगी। तो अगर दिल को थोड़ा सा जिद्दी कर लिया जाए तो कोई भी सपना अधूरा रह ही नहीं सकता। तो आपका सपना क्या है और आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं उसे पूरा करने? बस निकल पड़ी अपना बस्ता लेके।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, ये आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ रिचा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुप्रभात और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। देखिए, मैं भी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में कुछ देर बाद आऊँगी, ठीक 8 बजे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस कार्यक्रम को सुनते रहना है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आप तक एक के बाद एक बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुंचाते रहें। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर तो आप सुनेंगे ही, लेकिन अभी प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप है ना, वो अब तक डाउनलोड नहीं की है, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। अब फ़ोन में हमारे रेडियो नहीं है, इसलिए आकाशवाणी नहीं सुन पा रहे हैं, ये वाला एक्सक्यूज़ ना चलने वाला नहीं है। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, और उस ऐप में आप बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हमारे सुन सकते हैं। और अगर आप आकाशवाणी डेली जो है उसे सर्च कर लेते हैं, तो आप इस कार्यक्रम को भी सुन लेते हैं। तो अपने ख्वाबों को पर दीजिए, उड़ने दीजिए, और मेक श्योर कीजिए कि उन्हें पूरी करने की जिम्मेदारी जो आपने उठाई है, जो आपके कंधों पर है, वो जिम्मेदारी आप खुद पूरी करें। रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आएँ, रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, रास्ते में कितने भी हर्डल्स आएँ, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो इन ख्वाबों के परिंदों को उड़ने दीजिए और साकार होने दीजिए अपने सपने।

जी हाँ, एक बार सपनों को पा लिया, फिर चाहे जो हो सो। और अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि स्टूडियो में द वेरी एनर्जेटिक गौतम आ चुके हैं, और वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज किस किस का बर्थडे है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी डेथ एनिवर्सरी है, क्या आज के दिन में खास है, ये सब कुछ उनके पिटारे में आपको मिलने वाला है। तो मैं इस हॉट सीट को छोड़ देती हूँ, क्योंकि आओ अब जो है वो गौतम की बारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी

के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047

0: मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: के सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी, उन्हें तो किनारा कर चल, रुकना नहीं, बढ़ते रहना मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ चल। एंड कहते हैं कि चेहरे पर शिकन और मुंह पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए और आपका ध्यान किधर है, बिकॉज आपका हीरो इधर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट इन दोस्त आरजे गौतम, स्टूडियो में आ चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर, और जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सुनते रहिए 102.6 FM, दिल से दिल तक।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। एक अप्रैल 1994 को आकाशवाणी ने देशव्यापी पहुंच को और मजबूत करते हुए अपनी 20 चैनलों वाली स्काई रेडियो सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के लिए दूरदर्शन की सैटेलाइट टेलीविजन सेवा की अतिरिक्त स्पेक्ट्रम क्षमता का उपयोग किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों की राजधानियों से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराना था। इस तकनीक से भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक नया मंच मिला, जिससे कोलकाता का संगीत केरल में और गुवाहाटी की खबरें गुजरात में भी सुनी जा सकती थीं। श्रोता अपने घरों में लगे सैटेलाइट टीवी रिसीवर DRS या केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बिल्कुल स्पष्ट आवाज में सुन सकते थे। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपका भी दिल कहीं ना कहीं हो जाता होगा फ्रीज जब कोई कहता है चीज, और मतलब मुंह में पानी जरूर आ जाता है। नेशनल चीज डे है आज। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं। और आज हम उस स्वाद का जश्न मना रहे हैं जो हर व्यंजन को खास बना देता है, यानी कि चीज। देखिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी ये सुनकर। चीज चाहे पिज्जा में हो, सैंडविच में हो, पास्ता में हो, या कोई देसी व्यंजन डिश में हो, चीज अपने अनोखे स्वाद और क्या ही बोलूं मलाईदार बनावट से हर निवाले को यादगार बना देता है। और आज के दिन अपने पसंदीदा चीज व्यंजन का आनंद ले, क्योंकि आज है नेशनल चीज डे। और चीज बोलते बोलते स्माइल भी करते रहो यार, सुबह सुबह अगर स्माइल करोगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बुजुर्गों का कहना है।

वेल दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और हमारे शो में रौनक आ जाती है आपके आ जाने से। जैसे मैं आ जाता हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर, और सबसे खास बात यह है कि आज हम बताते हैं आपको कि क्या खास है ना चीज डे के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया नेशनल चीज डे के बारे में, लेकिन आज जन्मदिन है प्रमोद भगत जी का। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के हाथ एक साथ दो मेडल लगे हैं।

और प्रमोद भगत ने एकल के SL 3 क्लास के फाइनल मुकाबले को जीतकर देश को इस खेल में पहला गोल्ड पदक दिलाया। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें प्रमोद और देश का नाम रोशन करते रहें। वेल, आप भी रोशन कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुबह हो गई है, उठ जाइए। और कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए कि कभी ना झगड़ा हो, और ऐसे से तो मत बोलिए जो आपसे तगड़ा हो, गल मिट्टी मिट्टी बोलिए थोड़ी। 102.6 FM।

दरअसल रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। लेकिन कुछ ऐसे किरदार जो हमेशा के लिए होते हैं असरदार, और आज बर्थ एनिवर्सरी है नूतन जी की। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही, और भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में एक्ट्रेस के महज शोपीस के तौर

पर इस्तेमाल किए जाने वाली परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, मैं तुलसी, तेरे आंगन की सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में क्या कमाल का अभिनय उन्होंने किया है। तो बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटीज ही होती हैं जो आने वाले समय तक या कहिए कि सदियों तक के लिए छाप छोड़ जाती है हमारे दिल पर।

दिल का ही तो कसूर है और ये दिल से दिल तक का सफर है 102.6 FM। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और कहते हैं कि बहुत वक्त लगा है, जी हाँ बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। मैं किसके किरदार की बात कर रहा हूँ पता है आपको? नाम ही जब वैभव है और काम फिर सूर्यवंशी वाला है ही। और मैं आपको बता दूँ कि इनके चर्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अच्छी न्यूज़ ये है कि भारत ए और श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाली त्रिकोणीय वनडे सीरीज के मैच अब लाइव देखे जा सकेंगे। यही होता है देखिए, मतलब फैन फॉलोइंग कमाल की है। और भारत ए की टीम में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं जिन पर सबकी नज़रें होंगी। और पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप और IPL के दौरान वैभव की फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ी है। और इसी के साथ ना जब फाइनल वाला मैच था RCB ने जो जीता और विराट कोहली काफ़ी कुछ गाइड करते हुए नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि बस अब इसी तरीके से फोकस्ड रहना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। शुरुआती दौर में मैंने आपसे एक बात कही थी ना कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। वेल, ऐसे लोगों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए और फोकस्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ आपको देखना चाहिए सामने की तरफ।

चिटांग, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और जोगी को जोग चाहिए, कहते हैं जोगी को जोग चाहिए योगी को तब चाहिए। और हम तो क्रिकेट के प्रेमी हैं, हमें तो कब चाहिए, लेकिन आपको बॉटल चाहिए, वाटर बॉटल, बिकॉज अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है आने वाले दिनों में। और अत्यधिक गर्मी से होने वाली परेशानी अगर आसपास किसी को नजर आती है, जैसे चक्कर आना, मतली या ज्यादा थकान लगे, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यदि आपके पास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा लगे, कमजोरी महसूस करे वो, या फिर ऐसा लगे कि मतलब पैनिक हो रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, उसे पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ दें और हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। जुग जुग जियो और जी भर के पानी पियो। और इसी के साथ सुनते रहो आप 102.6 FM, दिल से दिल तक।

थॉट ऑफ द डे, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर सफेद रंग में अगर वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती, ना जाने कितने जख्म लिए फिरता हूं, लहरा कर चलता हूं, मुस्का कर मिलता हूं, मैं ना जाने हर रोज ऐसे कितनों को दगा देता हूं। लेकिन ग्रीट करना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पहली बार मिले या बार बार मिले, मतलब इंप्रेशन कमाल का होना चाहिए ना, आपका पहली बार वो भी एक अलग इंप्रेशन होता है। स्टोरीज रही होंगी इसके पीछे भी काफी।

कल जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश भरपूर और ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, अ ट्विस्ट और अ टर्न, ये तो लाइफ में आते रह जाते रहेंगे ना प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, हमारे साथ थोड़ा सा गा लीजिए और 102.6 FM लगा लीजिए, दिल से दिल तक।

दिल को थाम कर बैठिए, बिकॉज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आगे भी आप सुनते रहेंगे। और ये कौन है जिसने दरवाजे को धीरे से है खींचा, जिसने एंटरटेनमेंट के जगत में बड़े प्यार से एंटरटेनमेंट को है सींचा। बिल्कुल आ गई है स्टूडियो में रिचा। राइमिंग और टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप, थोड़ा सा मतलब हो जाता है नमक के बराबर, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, लेकिन टाइमिंग ये कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। और जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो आरजे गौतम इज साइनिंग आउट। मिलेंगे दिल के तनाने, गाने नए पुराने।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ऋचा। और जो आपके करते हैं हर गम दूर, जो आपके चेहरे पर ले आते हैं खुशी, और जिनके आने से हो जाते हैं आपके दूर सब गम, ऐसे हमारे आरजे गौतम को करते हैं हम अभी के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरा है समय। और जब मेरा समय आता है तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट पक्की है। 9868107070 इस नंबर को याद रखिएगा, नहीं सेव किया है तो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस नंबर को सेव करने के बाद आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपने शहर के मौसम का हाल, ट्रैफिक अपडेट, और साथ ही कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसका फीडबैक। तो चलिए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन से गाने के साथ। तो ये गाना आप तक पहुंचता हुआ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बने रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।

जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ तो आपको तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएगी, और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज मिलता है आपको इस प्रोग्राम में। 9868107070 पर आप ट्रैफिक अपडेट शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या जहाँ इस जिस रूट पर आप इस वक्त हैं वहाँ ट्रैफिक स्मूथ है या फिर कंजेशन है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही तो दोस्ती चलती है ना, कि एक हाथ देना और एक हाथ लेना। भाई दुनिया का हर एक रिश्ता आजकल सौदे पर ही बेस्ड है। अब देखिए एक काम की खबर बताती हूँ आपको, जरा अपनी खिड़कियों से बाहर देखिए। अब आप कहेंगे कि सूरज चमक रहा है, धूप निकली हुई है, लेकिन लेकिन लेकिन आज ही मौसम बदलने के आसार भी हैं। और दोपहर बाद आप कहेंगे रिचा ने बताया था और बात सच हो गई, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद मौसम करवट बदलने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज और कल बरसात आएगी और आपको भिगो के जाएगी। मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और ये जो गर्मी लग रही है आपको, ये एकदम सुहाने मौसम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मौसम अपना रुख बदलेगा और एक बार फिर से बहुत ही सुंदर सा मौसम होने वाला है। तो आप भी रेडी हो जाइए और एक बार फिर से डांस करने के लिए उस गाने में जो कि मेरा और आपका हम सभी का फेवरेट है। समझ तो गई ही होंगे आप मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। तो इस गाने को कीजिए एंजॉय और इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ ऋचा आपके साथ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 102.6 MHz।

जी हाँ, बारिश आएगी तो बिल्कुल नाच लीजिएगा छम छम करके, क्योंकि बारिश का मौसम ही ऐसा होता है ना कि आप सारे टेंशन से बिल्कुल से भूल जाते हैं। मैं हूँ ऋचा, आपके साथ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग NCR, दिल्ली NCR। और यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही काम की खबरें लाते हैं, और उनमें से एक काम की खबर ये है कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे DTU भी कहा जाता है, वहाँ पर MSc के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन फिज़िक्स, MSc इन मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और जियोसेपियल साइंस में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको DTU.ac.in पर आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप जा सकते हैं और यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास भी कोई काम की खबर है तो वो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपके लिए प्ले कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और ये भी बता दूं कि न्यूज़ ऑन ईयर के जो मोबाइल ऐप है ना, उसके माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं।

जी हाँ, प्यार कई बार होता है और जितनी बार आप आकाशवाणी सुनते हैं उतनी बार आपको प्यार होता है, क्योंकि आकाशवाणी का जो मोटिव है वही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी इसका, और ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोगों का भला हो और बहुत सारे लोग इससे खुश रहें। तो देखिए कितनी अच्छी सोच के साथ इसे शुरू किया गया था, और इसके बारे में आपको कुछ बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ कि इस जो आकाशवाणी है इसके बेसिकली 1939 में कोलकाता में शॉर्ट वेव सेवा की जब शुरुआत हुई थी तब महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक विशेष कविता लिखी जिसमें उन्होंने रेडियो को आकाशवाणी कहा था। आकाशवाणी यानी कि आकाश से आने वाली आवाज, और तभी से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आधिकारिक रूप से 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया था, और इसे पहले 1935 में मैसूर के एक प्रोफेसर एमबी गोपाल स्वामी ने अपने निवास पर भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन शुरू करके उसे आकाशवाणी नाम दिया। आज देखिए आकाशवाणी देश की 23 भाषाओं में 179 से अधिक बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, और इसकी जो विविधता है वही इसे दुनिया का एक अनोखा ब्रॉडकास्टर बनाती है। आज आकाशवाणी का नेटवर्क लगभग 92% ज्योग्राफिकल रीजन तक पहुंचता है, वहीं 99.19% आबादी तक हमारा आकाशवाणी पहुंचता है। अगर आप आकाशवाणी के प्रोग्राम्स की बात करें तो हम बिना का गीतमाला के बारे में बात न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विविध भारती पर आने वाला ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसे सुनने के लिए लोग सभी वेट करते थे, और अमीन सयानी की वो मखमली आवाज़ बहनों और भाइयों ने घर घर अपनी पहचान बनाई थी। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने को हैं, और ऐसे में हम कैसे भूल सकते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो जाएंगे। तो आइए याद करते हैं यादों की एक मीठी सरगम को, और आकाशवाणी को सल्यूट करता हुआ ये बहुत ही मधुर सा गीत।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। और जितना समय आप इस सब बिताते हैं, उतने टाइम तक आप को इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट डोज मिलता है। हमारा मकसद केवल आपको एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि आपको इन्फॉर्म करना भी है। और एक ऐसी खबर जो शायद आपके बहुत ही काम की है, आप सभी जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिसाइकलिंग करें, हम सेव करें और साथ ही अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट को क्लीन करने की फॉर्मूलाज हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, जैसे कि रिन्यूएबल सोलर एनर्जी के बारे में, या पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या वाटर कंजर्वेशन का क्या महत्व है, क्लीनिंग सैनिटेशन कितनी ज़रूरी है, और वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। और अगर ये सब जानकर आप भी इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये एक्सपो बिल्कुल आप ही के लिए है। जी हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो होने जा रहा है और आज से ये शुरू हो रहा है, 6 जून तक है। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में ये होने वाला है। यहाँ आप बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं मेट्रो के थ्रू, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे आप, एयर प्योरीफायर इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे आप, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी के बारे में, रिसाइकलिंग मशीन्स के बारे में, क्लीनिंग सैनिटेशन, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में। इतना कुछ आपको जानने समझने का एक अवसर मिल रहा है, जानने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ जाने के लिए करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, तो अपने बिजी शेड्यूल में से, जो कि आप हमेशा वेरी वेरी बिजी रहते हैं, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी भी हैं, लेकिन यहाँ जाइए, समय निकालिए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सीखने के लिए कुछ नई तकनीक। रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए जाना कहाँ होगा, worldenvironment.in, worldenvironment.in पर जाइए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, और रजिस्ट्रेशन में आपको विजिटर्स रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, और वहाँ जाकर आप अपना अपनी डिटेल्स जब फिल करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानने सीखने समझने का आपको अवसर मिल रहा है। तो ऐसा मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए, जाइए इंजॉय कीजिए। और साथ ही अगर आप भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, उस नंबर पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर एक और चीज़ है कि अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और आपको लग रहा है कहीं पर ट्रैफिक जैम, तो मुझसे जल्दी से शेयर कीजिए ताकि मैं और लोगों को बता सकूं और वो रास्ता अवॉइड कर सकें गाना आप तक पहुंचते हुए।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ रिचा आपके साथ। एक बात और आपसे कहनी थी कि जब ये मौसम बदलता है तो अक्सर तौर पर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उन्हें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, और ऐसे में आपकी ज़रूरी है कि आप अपना खुद का ध्यान रखें या फिर अपने अपनों का ध्यान रखें। और इसके साथ ही आप नंबर नोट किया आपने 9868107070, इस नंबर पर आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ है, कहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, और इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इन्जॉय कीजिए और बने रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के साथ।

यह है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ ऋचा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपके काम की होती है, लेकिन ये खबर आपको ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम केवल दिल्ली के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली से जुड़े एक राज्य के बारे में भी बात कर रहे हैं, हरियाणा के बारे में। और हरियाणा में लगभग 24 साल बाद मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है और भारत निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक इसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो सितंबर में किया जाएगा और इसमें मैपिंग की जाएगी घरों की और उसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला जैसे जिलों में जाकर मतदाता सूचियों को एक बार फिर से जांचा जाएगा कि कहीं पर कोई उनमें गलती तो नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मतदाताओं की सुविधाओं के लिए जो ये गणना फॉर्म है ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराए जाएंगे और 5 जून से यानी कल तक इन्हें आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इनमें जिन घरों से गणना फॉर्म वापस नहीं मिले हैं वहां BLO जाएंगे और पता करेंगे कि क्या वजह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मतदाता हैं उन्होंने वो अनुपस्थित हैं या उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो मृत हैं या फिर कहीं डुप्लीकेट मतदाता तो नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर BLO घर जाकर सत्यापन करेंगे। तो बहुत ज़रूरी ये काम होने जा रहा है जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा। तो अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रांसफ़र हो गया है, घर आपने नया खरीदा है, आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप 5 जून को जो वेबसाइट है उससे एक आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी जिससे आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है आप वहां जाइए, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहां से आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए ये इतनी एक अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए और आपका काम भी हो जाएगा। तो अगर आप अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कोई भी सूचना आपको पता है तो आप कोशिश करें कि आप भी अपना सहयोग दें और कोई भी गलती सूचना में ना हो। एक गाना प्ले कर रही हूँ आपके लिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सुनते रहिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये है आकाशवाणी रेनबो, भारत का गौरव जिसे आप सुनते हैं। और ऐसे न जाने कितने सारे क्षण होते हैं जब आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आप भारतीय मूल के हैं। अच्छा, आप जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अमेरिका में 11 जून से। हालांकि मानती हूँ अभी इंडिया की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग फुटबॉल के इस महाकुंभ के बहुत ही दीवाने हैं, है ना? आप भी है ना? और अगर मेरी तरह आप भी फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं तो आपको बता दूं कि इस बार एक या दो नहीं बल्कि चार चार भारतीय मूल के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में होंगे अलग अलग टीम्स से, ऑब्वियसली। तो हालांकि भारत के लिए अभी फीफा वर्ल्ड कप में खेलना अभी बहुत दूर की कौड़ी बनी हुई है, लेकिन 11 जून से जो ये अमेरिका में शुरू होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इसमें भारतीय मूल के चार खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। और ये चार खिलाड़ी हैं सरप्रीत सिंह, जो इस बार न्यूजीलैंड की टीम से खेलेंगे ऑकलैंड में। इनकी जो मदर हैं वो पंजाबी हैं और ये इस बार न्यूजीलैंड की टीम से खेलने वाले हैं। और भारत ने जब खिताब जीता था तब न्यूजीलैंड चार देशों में इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा था। और इसके एक साल बाद सरप्रीत जर्मनी की पहली डिवीजन लीग में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी भी बने थे। उन्होंने 2019 के बायर्न म्यूनिख में की तरफ से तब पदार्पण किया था। इसी के साथ ही सैमुअल मोतोसामी जो कांगो से खेलने वाले हैं, इनका जन्म फ्रांस में हुआ लेकिन जो इनके फादर हैं वो तमिल मूल के थे। फीफा के नियमों के अनुसार कोई भी खिलाड़ी किसी राष्ट्र टीम में तभी खेल सकता है जब उसकी जैविक माता या जैविक पिता या दादी का जन्म उसी देश में हुआ हो। तो उस खिलाड़ी के पास उसका पासपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये जो हैं ये इस बार कांगो की टीम से खेलेंगे। इसके साथ ही निशान वेलुपिल्ले जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलने वाले हैं और इनके जो माँ हैं वो एंग्लो इंडियन हैं, तो ये भी भारतीय मूल के हुए। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट तहसीन मोहम्मद जमशेर जो कि कतर टीम से खेलने वाले हैं, इनके पेरेंट्स दोनों ही मलयाली हैं। और 2006 में ये कन्नूर से कतर चले गए। 16 जून को 20 साल के ये हो जाएंगे। और इसके साथ ही इनके जो पिता हैं जमशेद कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी थे और बेटा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है। देखिए ऐसे ही होते हैं हम भारतीय कि जहां जाते हैं ना वहां बस अपना सिक्का जमा देते हैं। तो ये जो खेल है ना इसे देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही पसंद भी आएगा आपको। तो अगर आप भी फुटबॉल के दीवाने हैं तो इस खेल को खेलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये है आकाशवाणी रेनबो। और जब कभी गर्मी की छुट्टियां आती हैं और यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है ना, दिल में केवल एक ख्याल आता है कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आपको इस गर्मी से राहत मिले। लेकिन वाटर पार्क तो केवल एक दिन का सलूशन है। दिल करता है कि आप पहाड़ों पर निकल जाएं, किसी ऐसी सुकून भरी जगह पर जहाँ पर आपके तन के साथ साथ मन को भी शांति मिले। और इसी शांति की तलाश में जब आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लेते हैं पहाड़ों की ओर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आप ही की सोच के साथ पहुँचे हुए होते हैं। और फिर आपको पता लगता है कि दरअसल यहाँ पर भी शांति हम लोगों ने छोड़ी ही नहीं और इस वजह से जाम पे जाम वहाँ पर झेलना पड़ता है, जिससे आपका मेंटल पीस तो ख़राब होता ही है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका भी होता है। पहाड़ों की भी शांति भंग होती है। तो ऐसे में माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग यू राइट नाउ। आप ऐसे में सुकून और शांति से अपने रहिए और घर पर रहिए। कोशिश करें कि आप दिल्ली में ही रहें और अपनी जो शांति है उसे यहीं कहीं ढूंढें, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत भीड़ है और ऐसे में रश करके हम वहाँ की शांति भी भंग कर देते हैं। जो होटल्स हैं वो ओवरलोड हैं, वो भरे हुए हैं बिल्कुल, रास्तों पर जाम लगा हुआ है और पहाड़ों की शांति भी भंग हो रही है। जब कभी आप टूरिस्ट बनकर किसी शहर में जाएं तो ये भी ध्यान रखें कि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शांति, वहाँ की जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहे। और हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक पेपर बैग या एक पॉलीथिन बैग ज़रूर कैरी करें। उस पेपर बैग में, न्यूज़पेपर में आप जितना भी कचरा है वो सब इकट्ठा करते रहें, डस्टबिन पर में ही।

ही ये कूड़ा डालें पहाड़ों में, यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकने से, गंदगी करने से दरअसल आप और भी गंदगी कर रहे हैं और अपना एक अपनी अपनी पर्सनालिटी का परिचय भी दे रहे हैं। पहाड़ों के लोगों को शांति पसंद होती है और ऐसे में ओवरक्राउडेड जब वो जगह हो जाती है तो उनकी खूबसूरती वैसी नहीं रहती जैसी कि वो होती है। आप उनकी खूबसूरती ना ख़राब करें। इवन अपने शहर में भी यही हैबिट रखें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ एक पेपर बैग, एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट कैरी करना ज़रूरी है ताकि आप सारा कचरा उसमें इकट्ठा करें और अपने शहरों की खूबसूरती को बरकरार रखें। ये शहर आपका है, ये देश हमारा है और इस पूरे देश को साफ सुथरा रखना, अपना शहर हो या जहाँ हम टूरिस्ट बनकर जा रहे हो वो हो, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। कूड़ा पड़ा था इसलिए कूड़ा फेंक दिया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वहाँ कूड़े का ढेर था इसलिए वहाँ एक और फेंक दिया, ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ज़रा ध्यान रखिए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप हमें। प्रोग्राम का नाम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मेरा नाम रिचा। न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल डाउनलोड की या नहीं, नहीं की तो कर लीजिए।

आज कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। अब से कुछ ही देर में दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आएंगे गौतम, और उसके बाद हिमानी के साथ आप वेस्टर्न म्यूजिक के मजे लेंगे। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता आपके लेकर आएंगे ठीक 11 बजे, और उसके बाद आप आशियाना सुनेंगे शाहिद के साथ ठीक 2 बजे। डॉक्टर है रेडियो डॉक्टर आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे 3 बजे, और इसमें आज बात होगी वर्टिगो के कॉजेस सिम्टम्स और क्योर के बारे में। ठीक 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और 5 बजे समय रहेगा कार्यक्रम सिटी लाइट्स का, जिसमें आप पूरे शहर की आपको जानकारी मिलती है, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। और अगर आप अपनों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कार्यक्रम कोई भी नहीं होगा। मैसेज मसाला मिक्स गीता आपके लेकर आएंगे इस कार्यक्रम को ठीक 6 बजे, और सुशांत के साथ एक बार फिर से

वेस्टर्न म्यूजिक लौटेगा शाम को 7 बजे। सबीहा आपके लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी याद आती रही ठीक 9 बजे, और 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंगे महफिल। अगर आप गज़लों के शौकीन हैं तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आप ही को सोच के डिज़ाइन किया गया है, तो इन्जॉय करते रहिए FM रेनबो के इन कार्यक्रमों को और बने रहिए हमारे साथ 102.6 MHz पर। न्यूज़ ऑनर की जो मोबाइल ऐप है उसे अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो उसके साथ आप आकाशवाणी दिल्ली सर्च करेंगे तो उस कार्यक्रम को आप बिल्कुल लाइव अपने मोबाइल सेट्स पर सुन सकते हैं।

घुंघरू बड़े टूट जाएं, लेकिन ये साथ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज पहुंचाने के लिए। और गौतम आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो गाने आप नए भी सुनेंगे और कुछ ऐसे पुरानों का तड़का भी रहेगा। तो इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जाने का वक्त हो गया है, मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। इंतज़ार कीजिएगा मेरा और अपना खूब ध्यान रखिएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल, गए वो दिन पुराने, चलेंगे नहीं कोई भी बहाने, क्योंकि आ गया हूं मैं लेकर गाने नए पुराने। जी हां, दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। कैसे हो भाई सारे?

वेल प्रसाद में चाहिए सबको छप्पन भोग और जोगी को चाहिए प्रेम रोग। दिल से दिल तक, दिल के तराने, गाने नए पुराने, टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग। पेश करता हूं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

well, दिल्ली का बदलता रहेगा मौसम, लेकिन आप रही ऑसम, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। पीते रहिए पानी।

कल पता है, कल मुझे एक मैसेज आया कि मुझे भूल जाना रमेश, मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा मेरा नाम तो गौतम है, तो वहां से मैसेज आया कि आप भी भूल जाना और रमेश को कहना वो भी भूल जाए। लेकिन आप हमें भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। दिल के तराने, गाने नए पुराने, आरजे गौतम के साथ।

कई सवालों का जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई चीजों में लॉजिक नहीं सिर्फ मैजिक चलता है। दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं।

धीरे धीरे करके मेरे जाने का समय आ चुका है, पता ही नहीं लगता समय कब चला जाता है। तो आरजे गौतम है साइनिंग आउट। जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो उर्फ आरजे गौतम है साइनिंग आउट। लेकिन जिनकी प्रीत है सुहानी, मिश्री सी मीठी वानी, और अब स्टूडियो में आपके साथ जुड़ेंगी हिमानी वेस्टर्न म्यूजिक लेकर, फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर

0: का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का मुकाबला फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: That was the Herman's Hermits with the track Years May Come, Years May Go. And right now, I'm going to go, but see you on the other side of this break.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: Absolutely, always number one, always the leader, always the pioneer, always the boss, and that is Akashwani, and this channel is Akashwani Rainbow. So coming back to the show, and I just can't help thinking about the summers. Summers are getting more and more unbearable with each passing year. We just have one option here: grin and bear it. I know you must be wondering, how can we grin in this heat? Oh my God, it just makes us groan instead. Well, that's why we at Akashwani are your best friend for life, and we make sure that you grin and not groan. So for now, enjoy the music that we are playing for you, and I will be sharing some tips with you later on in the show. So you'll have to remain tuned in, and they will ensure that the heat does not make you breathless.
5: Breathless! If you love me to breathe, don't tease. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love comes tumbling down. Leave me breathless.

0: So that was from the 1968 film Saathi, the lyrics by Majru Sultanpuri, music by Naushad, and that was, of course, Mukesh and Suman Kalyanpur. I am so grateful to all of you. You're enjoying all the numbers that I'm playing. Vikram Singh from Panchkula, I will definitely take up your message. Please remain tuned in. I am taking a short break right here.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: You're with us on Akashvani Rainbow, and there can be no doubt that you are Rainbow family. Our listeners are the backbone of Akashvani. I have this message here from Vikram Singh Panchkula, and he says the technical services are officially designated as the backbone of all India radio. Even RJs and a bit of us, the technical team, plan, design, installation, operation and maintenance of the studios, transmitters and other technical operations required to keep the network running smoothly across the country. Absolutely agree with every word that you say, but then again it comes back to the same thing. You know, you work hard and everything, you do everything, you make a proposal, you go, you submit to a boss or a presentation or whatever. Ever it may be. And the boss just takes a look and just keeps it with him or her and doesn't say a word. My God, what deep motivation that is. I mean, you worked so hard for that. And the result? What? Okay. So that is why we say that our Rainbow family is our backbone. You are the listeners who devote your love, time and energy for us, and you mean the world to us. You are our shade in the sun, our warmth in the winter, our shield from the rain, our strength during a storm. You, our Akashvani Rainbow family members, are our evergreen tree.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019-2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों, भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज मिजोरम म्यांमार सीमा पर स्थित चम्फाई कस्बे के 9 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बताया कि ये छापेमारी देश में बड़े पैमाने पर अवैध बर्मी सुपारी की तस्करी करने वाले एक संगठित सीमा पार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है। निदेशालय ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की

लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमरीका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं बताऊंगी बहुत सारी बातें बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की। साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का होगा क्विज और आप बन सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं, बन सकते हैं। और साथ ही साथ जब बात हो रही है तो बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आंसर दीजिएगा, बन जाएंगे आप बॉलीवुड सरताज। अभी फिलहाल ये गाना आप सभी लोगों के लिए।

जी हाँ, बहुत सारे गाने आपके लिए आएंगे और बहुत सारी बातें आपके लिए आएंगी बॉलीवुड की। और आपके साथ मैं हूँ बबीता रावत, बता रही हूँ बातें बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की। तो जैसे कि ये गाना आपने सुना ना, ये ऐसे ही नहीं सुना दिया है मैंने आपको। जी हाँ, इस गाने में जो चोरी डांस कर रही है वो कोई और नहीं है, वो है प्रिया मनी। और आज है इनका बर्थडे। और करियर की जब इन्होंने शुरुआत की थी 2003 में, और 2007 में इन्होंने तमिल फिल्म परुथी वीरन से एक बेहतर प्रदर्शन की शुरुआत की थी, उसमें नेशनल अवार्ड भी इन्होंने जीता था। और हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये जो मशहूर गाना था आपने सुना, इसमें भी था। और साथ ही साथ जवान फिल्म में भी उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की बात कहें तो प्रियमणी चर्चित हैं। एक अभी रिसेंटली सीरीज आई थी द फैमिली मैन, उसमें भी द फैमिली मैन की जो वाइफ है, मनोज वाजपेयी की जो वाइफ बनी हुई है, वही हैं प्रिया मनी। और प्रिया मनी ने बहुत ही जबरदस्त किरदार निभाया इस बार की जो सीरीज थी उनकी। और उनका है बर्थडे, हम करते हैं उन्हें हैप्पी वाला बर्थडे विश। इसके अलावा हम बता दें आपको कि आज है बर्थ एनिवर्सरी नूतन की। जी हाँ, वेटरन एक्ट्रेस रह चुकी हैं और 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का ताज पहना था इन्होंने। करियर की शुरुआत इन्होंने 1950 में हमारी बेटी फिल्म से की थी। और सीमा, सुजाता, बंदनी, छलिया और मैं तुलसी तेरे आंगन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म फेयर की बात की जाए तो फिल्म फेयर पुरस्कार में 5 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और 30 साल से मतलब अधिक वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना था ये उनका। और साथ ही साथ पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं। और एक और शख्स हैं जिनकी आवाज़ का जादू सलमान खान के साथ साथ चला बहुत लंबे दशक तक। 1989 की फिल्म में मैंने प्यार किया के गीतों जैसे दिल दीवाना, कबूतर जा जा जा, या हम आपके हैं कौन, दीदी तेरा देवर दीवाना, और अभी जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उन्हीं की आवाज में है। जी हाँ, SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज गूंज रही है हर जगह। आज है उनका बर्थडे, चलिए सुनते हैं उनका गाना।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और बता रही हूं बॉलीवुड की बातें। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं आपकी लाइफ में, और कुछ एक ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जिसकी हो रही है री रिलीज। और री रिलीज ये फिल्म हो रही है क्यों? क्योंकि इस फिल्म को हो चुके हैं पूरे 25 साल रिलीज हुए। जी हाँ, 15 जून 2001 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान, और ये फिल्म बहुत लंबी थी लेकिन फिर लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया था। और एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स से लबरेज थी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे इस फिल्म में। और जब कैरेक्टर्स की बात आती है तो एक कैरेक्टर इसमें तो सभी को याद होगा, जी हाँ, लगान फिल्म के भुवन का कैरेक्टर आमिर खान ने इसे किया था। और जब गौरी की बात आती है तो गौरी एक कम सिंसी हसीना ग्रेसी सिंह ने इसमें कैरेक्टर प्ले किया था, और बहुत ही खूबसूरत लगे थे ये दोनों लोग। और अब ये फिल्म री रिलीज हो रही है 12, 13, 14 जून को थिएटर्स में आ रही है 3 दिन के लिए। और आशुतोष गोवारिकर ने ये फिल्म बनाई थी और अब उनका ये डिसीजन है कि 3 दिन के लिए इस फिल्म को हम दर्शकों को दिखाएंगे और एक बार फिर से रिक्रिएट करेंगे अपनी उन मेमोरीज को जो लगान से जुड़ी हुई हैं। वैसे इस फिल्म की रिलीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं 12 तारीख को, कहीं ना कहीं उन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और कौन कौन सी फिल्में हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत।

एक बार फिर से प्यार बिखेरने ये फिल्म आ रही है थिएटर्स में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और फिल्में भी हैं जो रिलीज होने वाली हैं। 12 जून को रिलीज होने वाली बहुत सी फिल्में हैं और उसमें से कौन कौन सी फिल्में हैं, गवर्नर जो कि मनोज बाजपेयी स्टारर है, और मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ और वेदांग आपको इसमें दिखाई देंगे, और इसके अलावा भारत भाग्य विधाता कर्नल रनौत की मूवी है, और हॉन्टेड ट्रीडी इकोस ऑफ पास्ट। जी हाँ, आपको पता ही है ये एक हॉरर फिल्म है, विक्रम भट्ट की मूवी है। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन आप देखिए ना, इतनी ढेर सारी फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, तो एक एक करके सारी फिल्मों के बारे में बताया जाएगा। भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर रिलीज़ हो गया, आप सभी को पता है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस मूवी है, और जब रियल इंसिडेंट की बात आती है तो किस घटना पर है, 26/11 मुंबई हमले की जो घटना है उस पर ये फिल्म बेस है, और पूरी तरीके से हाइलाइटेड है ये उन कर्मचारियों का जिन्होंने उन कर्मचारियों पर जिन्होंने इस

0: घटना के समय में जो इंजर्ड लोग थे उनकी मदद की, यानी कि नर्सेज और वार्ड बॉयज, उन पर उनके उन पर बेस्ड ये मूवी है। और ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, ज़बरदस्त फिल्म जो ट्रेलर का है वो रिस्पांस आया है, और 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि भारत भाग्य विधाता, ये जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना, लेकिन इस टाइटल के पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी है ऐसी कि ये कहानी लेकर आने वाले थे जॉन अब्राहम, और जब जॉन अब्राहम ये कहानी लेके आने वाले थे, उन्होंने अपना मुहर लगवा ली थी इस टाइटल पे। तो कंगना रनौत ने अपनी जो फिल्म थी उसका जब ये स्टोरी सुनी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि इसका जो टाइटल होना चाहिए वो भारत भाग्य विधाता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जॉन अब्राहम से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये टाइटल हमें दे दें, और ऐसा ही हुआ। जॉन अब्राहम ने बिल्कुल हामी भर दी, और ये टाइटल जो फिल्म का है वो मिला जॉन अब्राहम की तरफ से कंगना रनौत को। तो देखिए ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूछते हैं आपसे एक सवाल जो बनाएगा आपको बॉलीवुड सरताज। तो सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और जब बात आ रही है बॉलीवुड सरताज बनने की, तो चलिए प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे। बॉलीवुड सरताज का आज का प्रश्न है, लगान फिल्म की हमने बात करी और लगान फिल्म जल्दी री रिलीज हो रही है और लगान फिल्म में आमिर खान ने जबरदस्त कैरेक्टर निभाया था, चलिए उसी कैरेक्टर का नाम आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए बताइए कि लगान फिल्म में आमिर खान के कैरेक्टर का क्या नाम था। जी हाँ, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। लगान फिल्म में आमिर खान ने जो किरदार निभाया था उसका क्या नाम था, ये हमें भेज दीजिए 9868107070 पर। बन जाइए बॉलीवुड सरताज अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, हमें जल्दी जल्दी भेज दीजिए। और आप तैयार हो गए होंगे मुझे लगता है, और फटाफट भेज भी दिए होंगे आपने आंसर्स। हम तक पहुंचेंगे, हम जरूर बनाएंगे आपको बॉलीवुड सरताज जिसका सबसे पहले जवाब हम तक पहुंचेगा।

बात भी कर ली जाए। आज पैडी फिल्म रिलीज हुई है और ये फिल्म तमिल तेलुगु हिंदी फिल्म जगत में धमाल मचा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तक की ताज़ा जानकारी में पहला हाफ जिस जिसने भी देखा उन्होंने कहा भाई रामचरण तो ज़बरदस्त लग रहे हैं इसमें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, कुश्ती स्प्रिंगिट पर बेस्ड कोई फिल्म लेकर आए हैं। और जब दर्शकों की बात आती है तो रामचरण के करियर में सबसे अच्छी फिल्म बताई जा रही है ये। और वैसे तो इस फिल्म ने कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं, एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कायम किया है। और आज रिलीज़ होने वाली थी फिल्म और मंगलवार तक का ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 12-12.5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी इस फिल्म की। और जब बात की जाती है तो तेलुगु में हुई इस फिल्म की सबसे ज़्यादा कमाई, क्योंकि जो तेलुगु जगत के हमारे दर्शक हैं ना वो इसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, और भी जगहों पर ये धमाल मचा सकती है, आगे भी पता चलता रहेगा आपको ये फिल्म। वैसे ये फिल्म जाह्नवी कपूर की भी है, जाह्नवी कपूर भी इसमें दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी फिल्म का गाना सुन लेते हैं।

चिकरी चिकरी और चिकरी चिकरी करते हुए अब आने वाली है ये फिल्म, आ चुकी है फिल्म और कमाल धमाल मचाने वाली है ये फिल्म। अब जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं वो है दृश्यम 3। जी हाँ, मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। 13 दिन में इसने लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर की का बिजनेस कर लिया है और अब ये देखना है कि जो मोहनलाल की जो मलयालम फिल्म है दृश्यम, आने वाली जो हमारी दृश्यम है ना, जिसे अजय देवगन लेने आने वाले हैं, वो कितनी डिफरेंट होने वाली है। जी हाँ, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो हिंदी वर्जन का दृश्यम 3 है और जो मलयालम वर्जन के दृश्यम 3 है, उनका जो क्लाइमेक्स है वो डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए होने वाला है, ये तो खैर हमारे अभिषेक पाठक जी ही बता सकते हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने घोषित कर दिया है कि ये फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी है, शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है और आधिकारिक तौर पर जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आती है रिलीज की। तो हम बताएंगे आपको कब होने वाली है ये फिल्म रिलीज। अभी सुनिए दृश्यम का ये गाना।

कार्बन कॉपी तो है ये फिल्म किसकी और अदृश्यम 3 मलयालम फिल्म की, लेकिन आने वाली है अजय देवगन की फिल्म जिसका नाम है दृश्यम 3। और जो कैरेक्टर है ना इसमें अजय देवगन का, बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर रहा है और उसे कौन नहीं जानता। 2 अक्टूबर की कहानी इतनी बार विजय सावलगावकर ने बताई है कि भाई कानून भी इस चीज़ पर मोहर लगा चुका था कि विजय सावलगावकर कहाँ थे 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 2026 को इसकी जब तीसरी सीरीज आने वाली है तो ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि दृश्यम 3 का जो क्लाइमेक्स है क्या वो मलयालम मूवी से अलग होने वाला है या नहीं, या फिर अभिषेक पाठक जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने ऐसे ही कह दिया नहीं नहीं ऐसे ही नहीं कहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। वरना एक टाइम ऐसा था कि कहा जा रहा था कि जो तीनों फिल्में हैं मलयालम और तमिल और जो हिंदी है वर्जन, ये तीनों एक साथ रिलीज़ होंगी, लेकिन कुछ वजह से थोड़ा सा चेंजेस हुए और अब मलयालम फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। हिंदी फिल्म का रिलीजिंग डेट बता ही दिया है आपको, 2 अक्टूबर 2026 को फिल्म आएगी अजय देवगन की दृश्यम 3।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे बॉलीवुड सरदार। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? हेलो
2: हेलो
1: तरुण जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ।
1: आज आप हमारे बने हैं बॉलीवुड सरदार और कैसा लग रहा है आपको?
2: बढ़िया।
1: आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और पहले जवाब दिया। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ फिर से एक बार। लगान फिल्म में आमिर खान का जो किरदार था उसका नाम क्या था?
2: भुवन।
1: भुवन, और बिल्कुल सही जवाब दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप बने हमारे बॉलीवुड सरताज। क्या करते हैं तरुण जी आप?
2: हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं।
1: अच्छा, और साथ ही साथ आप हमें सुनते रह रहे हैं?
2: जी जी, 8 बजे से रात के 8 बजे तक।
1: बिल्कुल, आप जैसे ही हमारे साथ श्रोता जुड़े रहने चाहिए जो हमें प्यार हमें सुनकर देते हैं और साथ ही साथ हमारा हमें रिप्लाई करते हैं मैसेजेस के थ्रू, और बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा।
1: थैंक यू। और अगला प्रोग्राम जो आप सुनने वाले हैं प्ले इट कूल हिमानी के साथ, रहिएगा जुड़े हुए। उसके बाद मेरा वाला सॉन्ग में सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी होगी आपकी मेरे साथ। ठीक 1 बजे मिलेंगे आपसे, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो मोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी

प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
5: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: जितना जल्द होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर। आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दावत आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में आप भेजते हैं हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट और हम यहाँ पर प्ले करते हैं आपकी भेजी हुई सॉन्ग रिक्वेस्ट। और क्यों ना हो भाई, आपसे ही तो हम हैं और हम आपकी कदरदान हैं, और जब आप हमें फ़ोन के थ्रू अपना मैसेज भेजते हैं तो हमारा बस यही मन करता है कि हम सारे गाने प्ले कर दें, पर क्या करें ना, वक्त का तकाजा होता है और कहीं ना कहीं हम उस पे मजबूर होते हैं, कुछ ही गाने हम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर करते ना हुए हम गाना प्ले करने वाले हैं, और ये गाना कौन सा है, कौन सा है? जी हाँ, सबसे पहली फरमाइश जो आज हमारे पास आई है वो कुछ खास है और बहुत डांट डपट के भी कहती हैं कविता उत्तराखंड से कि हद करते हैं आप, मेरा वाला सॉन्ग प्ले नहीं है, ऐसी क्या बात हुई है। और लिखा है कि एक महीने से केवल संदेश शामिल किए जा रहे हैं और सॉन्ग प्ले नहीं किया जा रहा। भाई देखिए, अब आपका पसंदीदा गाना हम प्ले कर रहे हैं तो नाराज़ मत होइए, और ये लीजिए आपकी पसंद का गाना यहाँ पर आपके लिए।

और मुलाकातों के सिलसिले आपकी मैसेजेस के द्वारा हमसे होते रहेंगे रूबरू। और यहाँ पर अगला जो हमारे पास मैसेज आया है वो है पंकज अमरावती से। इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है साजन फिल्म का, एसपी वाला सुब्रमण्यम का याग्निक की आवाज में ये वाला गाना।

अभिजीत आवाज लगा रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से इन्होंने चलते चलते फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाए इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए।

0: दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
3: कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। राजेश कुमार चौहान जालंधर से लिखते हैं, नमस्कार और प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ उनका पसंदीदा गीत भी हम चला देते हैं। कभी कभी फिल्म से उन्होंने मैं पल दो पल का शायर हूं मुकेश की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको सुना देते हैं।

कभी कभी कैसा होता है ना कि एक ही जो गीत होता है ना उसमें हमारी पूरी जिंदगी की जो दास्तान होती है वो छुपी हुई होती है, और हम उन्हें बस सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये गीत कुछ ऐसे ही होते हैं, और मुझे लगता है कि मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना तो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगला गाना भी जो आने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में बहू बेगम से हम इंतज़ार करेंगे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ तो ज़बरदस्त है, लेकिन साथ ही साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह जी भी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो मध्य प्रदेश से आपने रिक्वेस्ट की है, पद्मा टॉकीज नेपागंज नेपानगर से, बहुत ही प्यारा गीत है ये, आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए।

बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले हो जाए, और अगला जो गाना हम प्ले करने वाले हैं नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से फरमाइश करें। इसके अलावा हमारे पास हितेंद्र दास ने भी कहा है कि किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिए, असम स्टेट से हैं। इसके अलावा सौरभ अरनेजा जी भी कह रहे हैं हम आपको सुन रहे हैं गाजियाबाद से, और हमारा भी किसी भी गाने के साथ नाम ले लीजिए। तो लीजिए आप सभी लोगों का नाम, और आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है ये सॉन्ग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: जी हाँ, आज आप 4 से 5 सुनेंगे संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ। और अभी जो प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में मेरे साथ आप सभी लोग 9868107070 पर अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और अब अगली जो रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं वो कुछ खास खास होने वाली, क्योंकि ये जलवा बिखेरने वाला है ये गाना। जी समझ गए होंगे, पटियाला से जीएस गिल जी, आपका ही पसंदीदा गाना हमने प्ले कर दिया है, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और अगले गाने का जलवा आप सभी लोग देखेंगे। इम्तिहान फिल्म से है ये गाना और लिखते हैं कौन? लिखते हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। जय जिनेंद्र आपको भी। और परवणी महाराष्ट्र से लिखा है इन्होंने और ये श्रोता संघ है वहाँ के, तो आपकी फरमाइश पर ये गाना।

वैसे चाह तो आप भी रहे होंगे कि आपकी पसंद का गाना चले, और अब अगला जो गाना होने वाला है शुरू, उसका नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा गाना भी है, और नाम जो है मनोज कुमार, अंजलि कुमारी, हिमांशी, प्रियांशी, दिल्ली से, संत नगर बंगाली कॉलोनी से इन्होंने फरमाइश की है इस गाने की। और साथ ही साथ एक और है जो कहते हैं कि किसी भी गीत में मेरा नाम ले लीजिएगा, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा के साथ। कौन है ये? हाँ, बहुत लंबे शंबे नाम है यहाँ पे, और कस्बा गुनौर यूपी से इन्होंने लिखा है हमें, और पूरी अब्बासी फैमिली, मोहम्मद सईद, निगहत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, सबके नाम ले लिए मैंने। और ऊपरकोट बुलंदशहर से हैं, मतलब इसके अलावा भी, मतलब जो एड्रेस है इनका, अब मैं तो पहुंचने वाली हूं आपके पास। और आदाब लिखते हैं, तो चलिए ये गाना आपके लिए भी डेडिकेटेड है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबिता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मीरा वाला सॉन्ग और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है शुभजीत कोलकाता से। इन्होंने परिंदा फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है, तो लीजिए और आपकी फरमाइश पूरी भी हो गई।

जी हाँ, इससे पहले जो आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट सुनी थी ना, वो रंजीत जी की थी मुकंदपुर से। और अब आ चुके हैं सुभजीत की पसंद का ये गीत। कोलकाता से आपने फरमाइश की है, तो लीजिए सुनिए, एंजॉय कीजिए।

वैसे हमसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, शायद अगला प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए, और रहिएगा उनके साथ आशियाना प्रोग्राम में। उसके बाद होगा रेडियो डॉक्टर का सिलसिला, और वर्टिगो कॉज सिम्टम्स एंड क्योर, इस पर बात होगी आज। जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रमों के द्वारा हमसे, हम यूं ही आपके साथ जुड़े हैं, हमारा और आपका तो दिल का बंधन है ना, तो बस ये दिल का रिश्ता यूं ही बना रहेगा आकाशवाणी रेनबो के साथ। अभी ये गाना आपके लिए, और मैं लेती हूँ यहाँ से विदा, आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। प्रोग्राम का समय हो गया है आशियाना और लेकर आया हूं मैं, मेरा नाम है शाहिद, और हमेशा की तरह से आज बात सीनियर सिटीजन्स की, हमारे वृद्ध बुजुर्गों की, अक्षयवत। तो बात करेंगे आज अपने इस आशियाना में बुजुर्गों के बारे में और उनकी हेल्थ वेलबींग के बारे में, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट। बने रहे आप हमारे साथ रेनबो पर।

आशियाना में हम हर थर्सडे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों, हमारे बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन्स के बारे में और उनसे जुड़े मुद्दों पर और उनके लोगों के बारे में भी जिनसे जुड़ा हुआ है आज का ये प्रोग्राम, यानी कि वो जिनकी जिम्मेदारी है उनकी केयर की। सीनियर सिटीजन्स हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के प्रेशियस इनवैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इनका केवल हमारे बीच होना ही हमारे जीवन का अत्यंत सुखद और सुकून भरा एक अनोखा एहसास होता है। हमारे बुजुर्ग न सिर्फ इस समाज के ट्रेडिशन कीपर्स और मेंटर्स हैं, बल्कि यही तो हैं जिन्होंने और जिनकी सुनाई कहानियों ने हमें जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी के उतार चढ़ाव में मजबूती से आगे बढ़ते रहना समझाया। इनकी हर बात में होता है जिंदगी भर काम आने वाला एक सबक और इनकी कहानियों में होती है रूहानियत, खूबसूरती और एक सच्चाई। बुजुर्गों की बातें वक्त की किताब में लिखी बेशकीमती मोती हैं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के बारे में और आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। उम्र बढ़ने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है उनके स्वास्थ्य को लेकर। सबसे पहले उठने बैठने में परेशानी और साथ ही कोई ऐसी छोटी मोटी तकलीफ थी जिस पर तब ध्यान नहीं दिया जब शुरुआत थी और अब वो बढ़कर एक बड़ी बीमारी की शक्ल ले चुकी है। कहते हैं ना कि बुढ़ापा अपने आप में एक इम्तिहान होता है। बढ़ती उम्र में फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, तो अच्छा हो कि वक्त से ही वो नेसेसरी लुक आफ्टर और सेल्फ असेसमेंट शुरू कर दिया जाए। ताकि बुढ़ापे में आपको उतनी तकलीफ ना उठानी पड़े तो जरूरी है कि बुजुर्गों की किसी भी तकलीफ या बीमारी को घर के दूसरे लोग लाइटली ना लें और खास तौर पर उनको किसी ना किसी हल्की फुल्की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, बल्कि अगर हो सके तो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में उनको प्रोत्साहित करें और उनका साथ भी दें। इस तरह से ना सिर्फ वो एक्टिव रहेंगे बल्कि उनका हौसला भी बढ़ेगा और आपका साथ मिलेगा तो उनका वो सफर यानी कि वो वॉक भी बेहद ही खूबसूरत और आसान भी हो जाएगी।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। हमारी जिंदगी में बुजुर्गों का, हमारे पेरेंट्स का जो स्थान, जो मकाम होता है, वो दुनिया के सारे रिश्तों से बढ़कर सबसे ऊपर और एकदम स्पेशल होता है। उनका अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी का वो डिवोशन, सेक्रीफाइस और डेडिकेशन कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और कामयाब बना सकें, उनके एक्सपीरियंस से सबक ले और खुद वो परेशानियां ना उठाएं जिनसे वो गुजरे। हमारे बुजुर्गों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला करना, उनका मुकाबला करने, हमारी इमोशनल, फिजिकल और सोशल नीड्स को पूरा करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे घर के बड़े, हमारे बुजुर्ग न सिर्फ हमें काबिल और सक्सेसफुल बनाने में ज़रूरी योगदान देते हैं, बल्कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा, मार्गदर्शन और गाइडेंस भी इन्हीं से मिलती है।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
9: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
9: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

हर कदम हर घड़ी हमारे बुजुर्गों को हमारी जरूरत है, और सिर्फ उनको ही नहीं हमें भी उनकी जरूरत है। हमारे घर के बुजुर्गों के बारे में एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जितना जरूरी परिवार उनके और उनकी वेलबीइंग के लिए है, उतना ही जरूरी हमारे घर के वरिष्ठ का हमारे लिए भी है। परिवार को एक डोर से बांध कर रखना, आपस में प्यार मोहब्बत को बनाए रखना, परिवार का मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहना और कठिनाइयों का मिलकर मुकाबला करना, ये सब घर के बड़े यानी हमारे बुजुर्गों के ही दम पर आसान हो पाता है। लेकिन कभी कभार हमारे ये पिलर ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ अपने परिवार के छोटों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, मनमानियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं और बस खामोश तमाशाई बनकर रह जाते हैं। अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को खुद ही अंडरस्टिमेट कर लेते हैं और ईगो एरोगेंस के सामने सरेंडर कर देते हैं। यही वक्त होता है अपनी बात को मजबूती से रखने का, बिखर रहे और दूर हो रहे परिवार जनों को फिर से एक सूत्र में बांधने का, प्यार का सबक फिर से पढ़ाने का। याद रखें, जिस परिवार में बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वहां खुशियों के बाग लहलहाते हैं और परिवार एकजुट होकर हर चैलेंज का डटकर

अपने लिसनर से हम यही कहेंगे कि अपने घर के वरिष्ठ अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा समय बिताएं, उनसे उनकी कहानियां सुने, उनकी उन कहानियों से जिंदगी के सबक सीखें, उनके अपने बीच होने की इंपॉर्टेंस को वैल्यू दें, उनकी अनोखी बातों और यादों को अपने पिटारे में संभाल कर रखें ताकि वो हमेशा आपके बीच अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहें। शायक दो दें इजाजत, अपना और अपने बुजुर्गों का खूब अच्छी तरह ख्याल रखें। सुनते रहें 102.6 आपका अपना रेनबो। अगला प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर शालिनी मित्तल के साथ। और आज का संदेश टू सोल्जर्स स्पेशल एपिसोड सुनना ना भूलें 4 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। दोस्तों वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वे खुद या उसके आसपास की चीज़ें तेजी से घूम रही हों और आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तो क्या है ये परेशानी और क्या है इसका इलाज, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकाव, जो हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो हैं ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर विनीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम
3: जी। नमस्कार जी।
1: श्रोताओं इस विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल तो हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर हैं 01123421080 और 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर विकास, सबसे पहला सवाल है कि वर्टिगो है क्या और ये कितने प्रकार का है?
3: जी देखिए, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, आम भाषा में बोलते हैं। और चक्कर आने का मतलब ये है कि आपका हेड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं
1: जी,
3: लेकिन आपको ऐसी सेंसेशन होती है कि चारों तरफ की दुनिया मूव कर रही है, यानी कि आपके दिमाग में चक्कर है, एक्चुअल चक्कर नहीं है
1: जी।
3: तो वर्टिगो देखिए प्राइमरीली दो तरह का होता है, पेरिफेरल जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वो कान से रिलेटेड होता है। सेंट्रल जो वर्टिगो है वो अक्सर देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट कम होता है और वो लो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन काफ़ी बॉदरसम होता है
1: जी।
3: तो जो सेंट्रल कॉज हैं वो सीरियस होते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रोक आ गया, यानी कि लकवा मार गया, तो स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो एक सीरियस किस्म का जिसको बोलें कॉज है। या इसके अलावा देखिए माइग्रेन है, पोस्टीरियर माइग्रेन या वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, वो एक कॉज हो सकता है
1: जी।
3: या फिर हेड इंजरी के बाद भी चक्कर आ सकते हैं। तो मोटे तौर पे कई और भी कॉज हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉज अक्सर सीरियस हो सकते हैं। पेरिफेरल कॉज के बारे में डॉक्टर
1: विनीत।
2: जी मैम, मैम पेरिफेरल कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस नहीं होते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अच्छे से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। मेनली जो अपने पेरिफेरल कॉजेज होते हैं वो ईयर से रिलेटेड होते हैं, ईयर में जैसे BP वो पोजीशन चेंज करेगा पेशेंट अपनी, टर्न हेड करेगा या करवट लेगा, उसको चक्कर कराएगा सेंसेशन। फिर और भी कॉजेज होते हैं काफी
1: जी, इस पर बात करेंगे हम। पहले सुन लेते हैं गीत, और गीत पर गीत सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से हमारा नंबर बता दूं। हमारा नंबर है 2342-1080 और 2342-1082, व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए 9868107070।

श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या की, और इस पर हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण हैं जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है?

0: डॉक्टर विकास ढिकव जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण है जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है, और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल हैं?
1: जी, देखिए अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल

0: और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल हैं?
1: जी, देखिए अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल होता है कि
0: जी
1: चक्कर की वजह क्या है, कि गर्दन में चोट लगी है या सिर में चोट लगी है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर आपको लकवा आया है,
0: जी
1: या कोई आपको एक क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है सॉरी, तो कारण जो है

0: का कमजोरी आ सकती है, जो कि स्ट्रोक का लक्षण होता है, पोस्टीरियर
1: जी
0: सेरेब्रल, जिसको सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, और एकदम से जी मिचलाता है या बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो स्पिनिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पेरिफ्रल कॉज है उनके बारे में डॉक्टर विनीत
1: जी डॉक्टर
0: बताएं।
1: विनीत
2: जैसा सर ने बताया सेंट्रल कॉज के बारे में, जो दिमाग की वजह से होते हैं चक्कर, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर ने बताया लड़खड़ाएगा आदमी, चल नहीं
1: जी जी
2: पाएगा
1: जी
2: अच्छे से, बट जो पेरिफ्रल वर्टिगो होता है, जो हमारे कान से रिलेटेड होता है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसी
1: जी
2: से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड है या
1: जी
2: कान से रिलेटेड है।
1: जी जी
2: कान से
1: जी
2: रिलेटेड होता है तो यूजली जो है उसमें चक्कर होता है, चक्कर के साथ पेशेंट ये बोलेगा कि मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ, पोस्चर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बीपीवीबी। और फिर कान की अदर
1: सर ये
2: प्रॉब्लम्स,
1: बीपी वीबी को अगर आप थोड़ा
2: बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसका मीनिंग ही यही है कि पोजीशन चेंज किया आपने, करवट ली या आपने टर्न करा किसी साइड में हेड और आपको चक्कर आया, तो ये इसका इनिशियल साइन होता है कि पेशेंट
1: अच्छा
2: इससे जज कर सकता है कि हाँ मुझे कान की
1: ऐसा हो रहा है
2: प्रॉब्लम है,
1: अगर तो
2: तो हम
1: उसको
2: मुझे कान को ही दिखाना चाहिए,
1: ईएनटी स्पेशलिस्ट को
2: और
1: दिखाने
2: हियरिंग
1: के लिए।
2: डिक्रीज हो रही है
1: जी
2: तो मेरे को ईएनटी को पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी है, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस
1: जी
2: और वेस्टिबुलर लेबरिंथाइटिस, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया जो हमारा इनर ईयर है उसमें, तो उसमें हमारी हियरिंग भी डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो शॉर्ट शॉर्ट एकदम कान की प्रॉब्लम है।
1: जी सर ये जो आपने बताया हियरिंग डिक्रीज होना, ये एक कान में होता है या दोनों में या कभी कभार एक में भी हो
2: रेयर,
1: सकता?
2: मोस्टली 1 ईयर का रहता है
1: होता है।
2: लेब्रिंथाइटिस, बहुत बहुत रेयरली है कि वो दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व
1: सर
2: करे।
1: इसमें क्या दर्द भी रहता है
2: नहीं,
1: कान
2: दर्द नहीं
1: में?
2: होगा इसमें, चक्कर और
1: हाँ
2: उल्टी,
1: कान में
2: वॉमिटिंग
1: दर्द नहीं
2: नहीं,
1: होगा।
2: कान में दर्द नहीं होगा। कान में दर्द हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेज होगा, मैस्टॉइडाइटिस हो रहा है और वो इन्फेक्शन बोन में है, उससे पेन हो रहा है, और साथ के साथ हमारे इनर ईयर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो तभी हमारे को पेन के साथ ये प्रेजेंट
1: जी तो
2: करेगा।
1: सर ये क्या वर्टिगो जो बताया आपने ये कि गंभीर है समस्या?
2: जो पेरिफेरल कॉजेज हैं उसमें गंभीरता कम है, मेन ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है, जैसे किसी को रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान के चलिए आप काम कर रहे हैं, कुछ भी झाड़ू लगा रहे हैं, झुक करके खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है,
1: जी
2: या आपने ऊपर से कोई सामान उठाना है, नेक ऊपर करा, एक्सटेंड किया, फिर आपने नीचे सर किया अपना, तो चक्कर आने
1: सिर
2: लग
1: घूमने
2: गया,
1: लगा
2: या
1: चक्कर
2: आपने
1: आने लगा।
2: करवट अपना बॉडी टर्न करा, राइट साइड या लेफ्ट
1: पोजीशन
2: साइड
1: चेंज किए।
2: पोजीशन चेंज किया, चक्कर आ रहा है,
1: जी
2: तो ये ईयर का साइन है कि ईयर का इन्वॉल्वमेंट है
1: जी सर
2: इसमें।
1: इससे एक को रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन
2: बिल्कुल
1: पे ले लेते हैं
2: जी
1: उनका
2: जी
1: कॉल।
2: जी
1: हेलो
2: नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार,
1: जी
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: हाँ जी पूछिए सवाल।
2: मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो ये चक्कर फिजिकल, ये मानसिक, ये भावनात्मक रूप से भी आते हैं क्या चक्कर? जैसे हमारी बिटिया को जैसे कभी कोई शादी के फंक्शन में जहाँ भीड़ होती है, या जैसे कभी
1: जी
2: कभी बार बार तो नहीं होता है, जैसे कभी पूजा करते समय या कभी ऐसा माहौल बन गया दुख भरा
0: जी जी
2: परिवार
0: जी
2: में,
1: जी
2: तो उसमें उसको बेहोशी चक्कर जैसा आ जाता है। मतलब ये महीने में, मतलब बार बार नहीं होता, कभी कभी बार थोड़ी देर में ठीक हो जाता है,
1: जी
2: जैसे कभी शादी फंक्शन में या पूजा पाठ करते
0: समझ
2: समय,
0: गए
2: कहीं
0: समझ गए। रघुवीर जी देखिए
2: मंदिर में
0: दो
2: जाके, मंदिर में हो या घर में, ऐसी दुख दर्द हो,
1: जी
2: कभी
1: जी
2: झगड़ा झुगड़ा ऐसा
1: जी समझ गए
2: टेंडेंस
1: समझ
2: कभी
1: गए।
2: ऐसे, है ना?
1: जी डॉक्टर साहब आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, सुनिए।
0: जी देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो क्रॉनिक अनअटेंडेड और मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस है, उसकी वजह से इटसेल्फ चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी से स्पिनिंग सेंसेशन आ सकती है, एक बात। लेकिन अक्सर देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है और आके मरीज ये बोलते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, या रिश्तेदार बोलते हैं इनको चक्कर आते हैं, और चक्कर से उनका मतलब होता है दौरा आना। तो दौरा आना इज़ अनदर सीरियस प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल अलग तकलीफ है, उसको मिर्गी की तकलीफ बोलते हैं। उसमें क्या है कि चक्कर खा के मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक किस्म से बोलें कि टॉयलेट निकल जाता है, या
1: जी
0: फिर जो दांतें हैं एकदम से बिछ जाती हैं, जीभ कट जाती है, पसीना आता है, आंखें फिर जाती हैं, तो वो बीमारी बिल्कुल अलग है। तो उसको हम वर्टिगो से कंफ्यूज ना करें, वर्टिगो तो एक अलग किस्म की तकलीफ है, हालांकि जो एपिलेप्सी के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं जैसे फेनिटोइन है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर डोज हाई हो जाए, कार्बामाज़ेपिन की डोज अगर हाई हो जाए, तो भी वर्टिगो की सेंसेशन हो सकती है। वो तकलीफ़ बिल्कुल अलग है।

0: तो जहाँ तक इन्होंने अपनी बिटिया की बात की है, तो हो सकता है बिटिया को इन दोनों में से एक हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्योंकि वो तो देखिए इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सिम्टम है तो इनको इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो इट लुक्स लाइक कि कोई अंडरलाइंग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो इसके लिए साइकाइट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।
1: जी, उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा आज का विषय। हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। और इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास डिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। और आपको अगर इसी समस्या से कोई जुड़े आपके भी हैं सवाल, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबर्स पर जो हैं 2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो है 9868107070। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी
0: जी
1: कि
0: जी
1: वर्टिगो ये कितनी गंभीर समस्या है?
0: देखिए सेंट्रल वर्टिगो तो अक्सर गंभीर होती है, क्योंकि
1: जी
0: स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है,
1: जी
0: हेड इंजरी है या नेक इंजरी है, व्हिप्लैश इंजरी जिसको बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी, अक्सर एकदम से आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे किसी ने बहुत तेजी से और सिर जो है डैशबोर्ड पे लगा हुआ, व्हिप्लैश इंजरी हो सकती है, तो ये गंभीर किस्म की वर्टिगो होती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्टिगो भी होती हैं जो कम गंभीर होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर माइग्रेन है, तो वो उसको हम गंभीर माइग्रेन नहीं बोलते, लेकिन माइग्रेन की जो आम दवाइयाँ हैं जैसे सोमा ट्रिप्टान, राइजर ट्रिप्टान, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में काम नहीं करती हैं, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बीमारी और उसके कारण तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मरीज को देखिए इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये एक
1: जी,
0: सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे।
1: महत्वपूर्ण। जी
0: तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, आप चलिए मत, आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको बैठना परम आवश्यक है, या अगर आपको ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, उस करवट लेटिए जहाँ पे आपको स्पिनिंग सेंसेशन कम से कम महसूस हो रही है। शाम को आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है, तो आप डबली केयरफुल रहिए, आप टकरा सकते हैं, अनस्टडी हो सकते हैं,
1: जी
0: या अगर आप हाइट पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो आपको पहाड़ों की वजह से भी एक्रोफोबिया की वजह से वर्टिगो सेंसेशन हो सकती है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है तो वो एक्सेंचुएट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है, आप 60 से ऊपर हैं, तो आप छड़ी लेके चल सकते हैं, इट
1: जी
0: मे नॉट साउंड ग्लैमरस, लेकिन छड़ी लेना आपके फायदे में ही है, आप गिरेंगे नहीं।
1: जी
0: एक होता है देखिए एक्चुअल गिरना, और एक है गिरने का डर होना। तो गिरने का जो डर है, इस पे तो डॉक्टर विनीत थोड़ा सा आगे बताएंगे वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन के बारे में,
1: जी
0: लेकिन गिरने का जो डर है ये भी बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। इसमें क्या है कि आप शादी में, ब्याह में, बारात में, मंदिर में जाने से डरते हैं, आपको लगता है आप अनस्टडी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, तो ये जो सेंसेशन है इसके साथ जिया जा सकता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर जरूर करती है, लेकिन ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन एक किस्म से दोबारा किया जा सकता है, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। तो जो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं ये आप जरूर रखिए, और
1: जी
0: इसके साथ साथ स्पेशली देखिए गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, जून का महीना चल रहा है, पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम, नमक जो बोलेंगे सलाद पे कम से कम, चीनी कम से कम, क्योंकि नमक और चीनी से कान का प्रेशर बढ़ता है, तो पेरिफेरल वर्टिगो बढ़ सकता है। और जिसको बोलते हैं जिमिंग, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो जिमिंग करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिए कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो अंडर एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ही आप करें, ऐसे नहीं कि मनमाने आज 50 किलो वजन उठा लिया, कल 25, फिर 75 किलो उठाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो
1: जी
0: सकती है।
1: डॉक्टर विनीत, इसी पर मैं आपकी
0: जी
1: भी वो करेंगे आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन पे उनका
0: जी
1: कॉल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हेलो हेलो,
2: नमस्ते मैम। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मेरे
3: जी
2: सर में भारीपन रहता है,
3: जी
2: गर्दन अकड़ी रहती है, कमर में भी दर्द रहता है और मेरे कान में छेद है। तो मैं कारण पूछना चाहता हूँ, ये कान में जो पर्दे में छेद है इसके कारण है या कोई और है? चक्कर भी आता है कभी कभी।
3: कान में पर्दे के छेद की वजह से चक्कर आना बहुत मुश्किल चीज़ है,
1: जी
3: उसके साथ कुछ और, या फिर तो आपको बीपी वीपी का प्रॉब्लम हो, कान में जो हमारी कैनाल है उसमें पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया हो, या हमारी जो कान की बैलेंसिंग कैनाल है उसमें कुछ माइनर छेद, साइनस टाइप का फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, बट वो रेयर चीज़ है। केवल छेद की वजह से चक्कर आना बड़ा मुश्किल चीज़ है। छेद की वजह से नहीं होगा, होगा तो या फिर तो अंदर पार्टिकल, या फिर वो आपके जो गर्दन जकड़ी हुई है और जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर आ सकता है। और हो सकता है आपको माइग्रेन की भी शिकायत हो, जिसकी वजह से सर में दर्द और उसमें नेक में आपकी जो गर्दन में जकड़न है वो हो रही हो और उसके साथ में आपको जो है चक्कर आ रहा हो।
0: जी, ये हो सकता है कि इनको होलोक्रेनियल हेडेक बता रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेफर पेन हो इनको।
1: जी जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वर्टिगो की स्थिति क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर?
3: जी मैम, बेसिकली
1: कितनी गंभीर स्थिति है ये?
3: जो पेरिफेरल है
1: जी
3: उसमें गंभीरता नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग उस वे में कि जैसे सर ने पहले ही बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको चक्कर आ गया
1: जी,
3: तो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि आप या स्टेयर से या माउंटेन से नीचे आ रहे हैं, तो वो उन सारी कंडीशन में थ्रेटनिंग है। जो सेंट्रल कॉजेज होते हैं जो ब्रेन की वजह से, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वो अगर चीज़ सेफ है, ब्रेन हमारा ठीक है, नॉर्मल है और पेरिफेरल हो रहा है कान की वजह से, तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
4: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं डेली प्रोग्राम सुनता हूँ, बट आज का ये प्रोग्राम मेरे को मतलब मुझे कॉल करनी पड़ी आपको।
1: जी जी
4: मैडम, मेरे फादर है, ही इज अराउंड 66 इयर्स ओल्ड
1: जी।
4: उनको 4 साल पहले बेल पाल्सी का अटैक आया था
1: जी,
4: एंड वो रिकवर कर गए थे अच्छे से, और 2 साल पहले उनको वर्टिगो भी आइडेंटिफाई हुआ, यही बीपीपीबी वाला इशू।
1: जी जी,
4: तो क्या डॉक्टर साहब ये चीज आपस में इंटर रिलेटेड है या उस बेल पाल्सी की वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है?
3: नहीं, ये दोनों चीजें आपस में, तो क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो है नहीं। अगर भी बेल्स पेल्सी की वजह से होता तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज होता, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, वो उसी टाइम पे प्रेसिपिटेट करता 4 साल पहले। अभी 2 साल पहले हो रहा है, तो आपको डिटेल टेस्टिंग इसके लिए एक वीडियो निस्टेक्मोग्राफी एक टेस्ट कराना चाहिए उनका, उससे रूल आउट करना चाहिए कि उनके कान की वजह से कैनाल में पार्टिकल फॉर्मेशन की वजह से चक्कर आ रहा है, और अगर MRI ब्रेन हो चुका है वो नॉर्मल है, तो मेरे ख्याल में आप नियर बाई अपने ENT डॉक्टर जो कि वर्टिगो के स्पेशलिस्ट हों, उनसे वीडियो निस्टेक्मोग्राफी करवाएं और उससे एक बारी रूल आउट करवाएं, क्योंकि उससे हम कई बारी सेंट्रल कॉज भी रूल आउट कर लेते हैं।
4: तो सारे टेस्ट करवा के वो सब नॉर्मल आते हैं, इसीलिए
3: नहीं, नहीं,
4: बार बार
3: ये वीडियो निस्टेक्मोग्राफी आपको टेस्ट कराना है।
4: ठीक है, वीडियो स्टेनोग्राफी,
3: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी VNG करके बोलते हैं, आप ये टेस्ट कराइए, और इसके लिए पहले आपको 48 घंटे पहले चक्कर की सारी दवा बंद करके तब जाएं।
1: जी
4: ठीक है,
1: बहुत अहम बात बताई आपने। जी डॉक्टर, आज का हमारा कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी पर देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं। हमें एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार। जी
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सर, मैं लोधी रोड नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना कंधे में, लेफ्ट कंधे में ज्यादा दर्द होता है, गर्दन में भी
1: जी।
2: और मैंने ब्रेन का भी MRI कराया था, वो भी नॉर्मल था, और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। ऐसा लगता है कई बार मैं कि गिरने लगता हूँ, गिरने लग जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द बैठ जाता है, तो दर्द मुझे रेगुलर लेफ्ट कंधे में बहुत रहता है। स्पाइन का भी मैंने MRI कराया, वो भी ठीक आया था। तो एक तो ये बता दीजिए, दूसरा डॉक्टर विकास कहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ये मैं सुन नहीं पाया था।
0: जी जी
1: जी
0: जी जी जी, मैं सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है?
2: मेरी उम्र जी 53
0: है। 53 में अगर कंधे में, लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है, तो आप एक बार शुगर की जांच कराइए, क्योंकि
2: शुगर भी ठीक है जी।
0: शुगर नॉर्मल है आपकी, तो आपने अगर कोई वजन उठाया हो सकता है उसकी वजह से रहता हो, लेकिन नेक में भी आपने बताया कि दिक्कत रहती है, तो जो
2: नेक में भी लेफ्ट साइड ही दर्द रहता है ज्यादा।
0: समझ गए, तो पोस्चर से रिलेटेड हो सकता है। कोई गर्दन में आपको चोट तो नहीं लगी थी?
2: नहीं चोट भी नहीं और मैंने वजन वगैरह कुछ नहीं उठाया, ये तो लगभग 5-6 महीने हो गए, काफी देर होगी, दवाइयां भी खाता रहता हूं,
0: कभी कभी कभी कभी क्या है पोस्चरल होता है और ये स्लो डिजेनरेशन होता है तो उसकी वजह से हो जाता है, या कभी कभी जिस जैसे 50 के बाद में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नस दबी हुई हो हल्की सी। तो आपने MRI ब्रेन तो करा लिया, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग भी कराई जा

0: सकती थी, लेकिन आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप एक सॉफ्ट कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं,
1: आप कौन से
0: ईटिंग।
1: हॉस्पिटल में बैठते हैं, सरकारी में?
0: जी, मैं पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, अभी भारत सरकार में हूँ। तो आप तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य तकलीफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल खास है कि आपको, आप बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये दिक्कत है, तो
1: मैं
0: इसको
1: ज्यादा देर
0: इस
1: खड़े भी नहीं हो पाता हूँ जी, मुझे
0: मैं
1: ऐसा
0: समझ
1: लगता है
0: गया
1: कि मैं
0: आपकी
1: मेंटल
0: बात। ये
1: बैठ
0: सर्वाइको जेनिक
1: फिरने वाला
0: वर्टिगो
1: हूँ, फिर मैं
0: बोलते
1: खड़े
0: हैं,
1: रहता हूँ
0: सर्वाइको
1: जी।
0: जेनिक वर्टिगो की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जो रिहैब है वो तो आपको करना पड़ेगा।
1: जी
0: देखिए, आपको जहाँ भी आपको लगे सीढ़ियाँ आप उतर रहे हैं तो आप रेलिंग पकड़ के उतरिए, नंबर एक। नंबर दो, अनइवन सरफेस पे केयरफुल रहिए। शाम को अगर अंधेरा है तो वहाँ पे डबली केयरफुल रहिए,
1: अकेले
0: आप गिर
1: मत
0: सकते
1: निकले,
0: हैं।
1: ये भी एक
0: अकेले अगर संभव हो तो आप किसी के साथ
1: साथ।
0: निकलें, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने वर्टिगो को मैनेज करना पड़ेगा।
1: सर
0: जी
1: एक
0: जी
1: बात, एक लास्ट लास्ट डॉक्टर साहब, मेरी छोटी सी ये बात है, मैं मान लो मैं सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जाऊं तो किस स्पेशलिस्ट को दिखाऊं, इसके क्या बीमारी से रिलेटेड
0: देखिए,
1: हो?
0: आपको पहले तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई आपको MR एंजियोग्राफी सजेस्ट करे, लेकिन आपका जो कॉज है वो वैस्कुलर लग नहीं रहा। तो नॉर्मली एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी हम वैस्कुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बहुत बार देखिए हार्ट में तकलीफ है, लेकिन आपका जो वर्टिगो है वो नॉन कार्डिक कॉज की वजह से होता है। तो आप तो एक सरकारी अस्पताल में जाके इवेल्युएशन करवाइए तो पता
1: जी
0: चलेगा।
1: जी जी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, और इस पर हमारे साथ हैं हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर विनीत, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पोजिशनल वर्टिगो, उसको कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है?
2: बेसिकली मैडम, पेशेंट को बस इतना ही जज करना है
1: जी,
2: जो पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी,
2: उसमें कि क्या उसको चक्कर हर कोई मूवमेंट कर रहा है, या हमारे जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बेड पे लेट रहा है या लेट के बैठ रहा है या करवट बदल रहा है, उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या चक्कर बढ़ जा रहे हैं
1: जी,
2: तो ये पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी।
2: ये मतलब सिंपल सा है, अगर इतना वो जज कर लेते हैं तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बोले कि मुझे ऐसा हो रहा है, पोजिशन चेंज करने पर हो रहा है, पोजिशनल वर्टिगो टाइप का हो सकता है। और इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है,
1: मैं पूछने वाली थी कि इसके लिए टेस्ट कौन-कौन से हैं।
2: एक तो जो केबल डेफिनेटली की पोजीशन चेंज करने पर है, उसके लिए हम वीडियो निस्टेगमोग्राफी एक टेस्ट रहता है, उसमें हम एक गॉगल पहनाते हैं, जो 3D गॉगल्स आजकल मॉल्स एरा में आपने देखे होंगे, उस टाइप का गॉगल सॉफ्टवेयर रहता है। टीवी पर हम उनके आईज के मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं,
1: अच्छा,
2: और उस आईज के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम ये जज करते हैं कि उसके एक कान में हमारे 3 बैलेंसिंग कैनाल होती हैं, तो हमारे किस ईयर में कौन सी बैलेंसिंग कैनाल में हमारा पार्टिकल पथरी बन गई है जो कि हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो असिस कर लिया हमने, तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कराते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है
1: जी।
2: इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं, और 30-40 मिनट्स में पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है
1: जी। डॉक्टर विकास, अगर न्यूरो की बात करें तो आप कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे?
3: जी देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चक्कर से ये मैनिफेस्ट करता है, जैसे मान लिया कोई 45 ईयर ओल्ड मेल चक्कर के साथ आता है, अदरवाइज फिट है, कार्डियक कोई कॉज नज़र नहीं आता है, उसको कोई इस्कीमिक इवेंट नहीं नज़र आती है, इस्कीमिक इवेंट से बोलें कि हाथ पांव में कोई कमजोरी नहीं आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेन स्कैन करवाइए या MR एंजियोग्राफी, अगर हमें लगे कि ये इस्कीमिक इवेंट है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्रेन का कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं, अगर ये दोनों नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की स्क्रीनिंग भी आप करा लें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑस्टियोफाइट हो या फिर जिसको बोलें कि PIVD हो सर्वाइकल एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जब इसको बोलें कि ब्रेन एंड नेक नॉर्मल है
1: जी,
3: तो सेंट्रल कॉज ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है, लेकिन फिर आते हैं फंक्शनल सेंट्रल कॉज, मतलब स्ट्रक्चरल सेंट्रल कॉज रूल आउट हो जाता है। जो फंक्शनल कॉज है उसमें बोले वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉमन कॉज है, तो वेस्टिबुलर माइग्रेन अक्सर जैसे मैंने बताया चक्कर से मैनिफेस्ट करता है, उल्टी जी खराब होता है, और हेडेक जो है कभी कभी होता है, सिर में भारीपन रहता है, ज़्यादा नहीं होता है, इसका जो एसोसिएशन अक्सर हाइपरटेंशन के साथ होता है, तो BP चेक करें, और अगर मान लिया ब्लड प्रेशर है तो ECG और ECO दो बेसिक टेस्ट है वो साथ में करवा लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट की बैटरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ये पता चल जाता है कि ये कॉज जो है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। तो अगर सेंट्रल कॉज है तो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं सेंट्रल कॉज के, कि एक तो वो एपिसोडिक नहीं होता है, वो जनरली मरीज खुद बोलता है कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है वो कुछ सेकेंड्स या मिनट तक होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है और ये चलता ही रहता है। फिर दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो है कोई हाई प्रेशर

0: ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे गार्ड हैं या
1: जी जी
0: आर्मी पर्सनल हैं तो, या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है. तो जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोबेबल कॉज है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंटर कहाँ है, क्लिनिकल पॉइंटर कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करवा
1: जी
0: सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल।
0: जी.
1: हेलो हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है
0: जी
1: कॉल। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि वर्टिगो में क्या क्या जोखिम और जटिलताएं होती हैं, इसके
0: जी
1: बारे में आपने बताया। इसके साथ ही सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह ये डेली रूटीन को प्रभावित करता है कुछ लोगों को, क्योंकि वॉमिटिंग आना ऐसे टाइम में या वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्या कहेंगे आप?
0: जी देखिए, जोखिम तो काफ़ी हो सकता है कि जो इस्कीमिक इवेंट्स हैं उसका पता नहीं चलता. ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आज हो जाए, TIA जिसको बोलते हैं, और कुछ समय के बाद स्ट्रोक हो जाए, तो इससे बड़ा जोखिम क्या होगा. स्ट्रोक तो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है,
1: जी
0: एक बात. अच्छा, दूसरा ऐसा होता है जैसे पार्किंसोनिज्म एक बीमारी है. एक होता है पार्किंसन डिजीज़ और एक होता है पार्किंसोनिज्म, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने मानसिक बीमारी के लिए दवाई लंबे समय से खाई है, तो उसके बाद में रिजिडिटी हो गई या पिल रोलिंग ट्रेमर हो गए, जैसे बोलें कि आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब जो अपने आप हिलने लग गए, तो आप जो चाय की ट्रे सुबह सुबह लेके जाते हैं तो वो
1: हाथ
0: आपके
1: श्रिंक कर
0: हाथ
1: रहे हैं।
0: शेक करते हैं, तो फिर चलने में इनकोऑर्डिनेशन होता है. तो मेरे कहने का मतलब पार्किंसोनिज्म में भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आए. तो आप ये देखिए कि ये अब सेंट्रल कॉज है, लेकिन इसकी जो बोलें कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी. फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो अक्सर यंग लोगों को होता है, टीनेज में होता है, 20 22 25 साल पे होता
1: इसका
0: है,
1: एज ग्रुप
0: तो
1: जो
0: एज ग्रुप नॉर्मली वर्टिगो 40 के बाद होता है, लेकिन जो जिसको बोले कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 और 40 के बीच में यंग लोगों की बीमारी है,
1: जी
0: और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो विटामिन डी कम होगा तो MS होने का खतरा थोड़ा बढ़ता है, तो ये भी हो सकता है. तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेंट्रल जो कॉज है, ब्रेन से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, क्योंकि वर्टिगो दो ही किस्म के होते हैं, कान से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, तो इसमें जो दिमाग से रिलेटेड है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है. तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कॉज क्या हो सकता है और कॉज के हिसाब से ही फिर इलाज होगा. हम ये बोलते हैं, देखिए कुछ जो जनरल प्रिकॉशन जो पहले बता चुके हैं वो तो मरीज को सब सबको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, कि आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो कि कान के सिग्नल जो ब्रेन में एक्सेसिवली जा रहे हैं, या ब्रेन से जो सिग्नल कान की तरफ जाने चाहिए उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसको शांत किया जाए, नंबर एक. नंबर दो, जो स्टडीनेस है पोस्चर की उसको एक किस्म से लाया जाए. तो दो चीज़ें तो करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए. और मरीज को बोलते हैं कि घर में बाथरूम में आप मैट लगा के रखिए, कि मैट अगर आप रखते हैं दोनों घर में और बाथरूम में, तो अगर आप गिर भी गए गलती से तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी.
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है
0: जी
1: कॉल लाइन
0: जी
1: पे, ले लेते हैं कॉल। हेलो
0: लेकिन सबसे पहले
1: हेलो
0: आपको ऐसी दवाइयाँ.
1: हेलो, अगेन इनका कॉल
0: जी
1: कट
0: जी जी
1: गया
0: जी
1: है।
0: जी
1: डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहूंगी कि
0: जी
1: कई केसेस में वर्टिगो अचानक से होता है, उसका क्या कारण होता है?
2: मैडम, देखिए अचानक से होने का एक हमारे ENT में होती है, ईयर से रिलेटेड कॉज होता है मीनियर्स डिसीज.
1: जी
2: उसमें पेशेंट अचानक से चक्कर आएगा और गिर जाएगा. बस जो हमारी दो कंडीशंस हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से काफ़ी मैच करती हैं,
1: जी
2: एक तो मीनियर्स डिसीज
1: हाँ
2: और एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस. मीनियर्स डिसीज में क्या रहता है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और वो 1 और 2 डेज सब रहेंगे, चक्कर आएंगे, उसमें वॉमिटिंग होगा और पेशेंट फोर्सफुल हिस्ट्री का कि मैं साहब चल रहा था और चलते चलते गिर गया और फिर मेरे को 5 10 मिनट में देखा तो मैं एकदम ठीक था. और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑरा के सिम्टम, मतलब उसको पहले से वो जज कर सकता है कि हाँ मुझे जैसे सर भारी होना, कान में भारीपन होना, कान में शाएँ शाएँ की आवाज़ होना, और उसके साथ साथ उसको जैसे मल्टीपल एपिसोड्स होते जाएंगे तो उसके साथ उसको हियरिंग भी थोड़ा डिक्रीज होगा.
1: जी
2: तो ऑडियोमेट्री टेस्ट से हम उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ इनका हियरिंग भी डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हुए, तो मीनियस डिसीज है. सेम इस थोड़ा सा मिलता है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मिलता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस. उसमें हमारी जो हियरिंग नर्व है उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से हमारे को जो है चक्कर आते हैं. उसमें और ब्रेन से होने वाले में दोनों में चीज़ सिमिलर होती है कि थोड़ा सा जो चलने की प्रॉब्लम है वो हमारे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वाले पेशेंट को भी होती है.
1: जी
2: तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है या
1: जी
2: नर्व का इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ कान जी।
1: इसके साथ साथ हमारे पास कई व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं।

0: निसार मास्टर हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 73 साल है और जब ये सुबह उठते हैं तो इनको चक्कर आते हैं और दिन में लेट कर उठते हुए इनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्यों है
1: ये मैडम, ये बीपी बीपी का प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो
0: जिसके
1: है।
0: बारे में अभी
1: हाँ,
0: आपने
1: जिसमें
0: हमें
1: अभी मैंने
0: बताया था।
1: बताया ये
0: जी
1: वही
0: जी
1: है।
0: जी और हमारे को एक और मैसेज आया है बलबीर जी का, वो लिख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा टांगों के बल 5 मिनट बैठकर उठता हूँ तो एकदम आँखों में अंधेरा आ जाता है आँखों के आगे। इनकी उम्र 70 वर्ष
1: ये
0: है,
1: मैडम
0: प्रणाम है।
1: पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
0: जी।
1: तो
0: डॉक्टर साहब एक और
1: जी जी
0: कॉलर पे हमारे साथ कॉल लाइन पे कॉलर है, जो ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
1: जी
0: जी जी
1: हाँ मैम, मेरा नाम रमेश है
0: जी,
1: और मेरी वाइफ आरती है, 65 एज है। वो
0: जी,
1: जब सुबह उठती है तो उनको थोड़ा चक्कर सा लगता है और
0: जी
1: उसके बाद थोड़ा हेडेक भी होता है, उसका वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगती है।
0: जी
1: और उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट कर लेती हैं तो काफी बेटर हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, MRI एक कराया था, सब चीज
0: जी
1: क्लियर है। तो
0: जी
1: मैं आपसे, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है और हम आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। आप दोनों डॉक्टर्स को और प्रेजेंटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है।
0: जी
1: थैंक यू,
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत
0: सर।
1: बहुत धन्यवाद। बेस जो मुझे लगता है आपकी जो धर्म पत्नी है उनको
0: जी
1: पोजिशनल वर्टिगो है,
0: जी
1: क्योंकि वो सुबह उठती हैं तब उनको चक्कर आता है, 5-6 घंटे रहता है, फिर वो थोड़ा सा अडेप्टेशन आ जाता है उनकी बॉडी को, क्योंकि ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि चक्कर का इलाज करते हों, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, वो टेस्ट कराएं और उसके बाद ओके
0: उनका एक एक्सरसाइज होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी।
1: ओके
0: जी
1: ओके
0: जी
1: डॉक्टर साहब, थैंक जी
0: यू वेरी मच, जी
1: थैंक यू
0: जी
1: थैंक यू वेरी
0: वेल
1: मच।
0: वेल सर, द्वारका दिल्ली से यशपाल हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए
1: जी
0: आपका धन्यवाद। ये लिख रहे हैं कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जो जिनकी उम्र 40 साल है, वो लिख रहे हैं कि ये वर्टिगो है और ये इसकी मेडिसिन लेती हैं, क्या फिजियोथेरेपी इनको एडवाइस की जा सकती है और क्या ये फिजियोथेरेपी वर्टिगो में इनकी हेल्प करेगी?
2: देखिए, डिपेंड करता है कि इनको क्या कॉज निकल के आता है। यंग पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकोजेनिक होता है, विमेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं कि वो हो सकता है। तो एक प्लेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं एक्सरे नेक, AP और लेटरल व्यू, या सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग विद द MRI ब्रेन, वो करा सकते हैं। तो दो ये टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो एक किस्म से ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा।
0: जी। सर पुष्पेंद्र गर्ग हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि इनकी माता जी की उम्र 56 वर्ष है और इन्हें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फांस जैसा फंसा हो। इन्होंने ENT भोपाल में भी दिखाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, उसमें आहार नाल में लाल लग रही है जो एसिडिटी लग रही है, तो गैस की दवा दी लेकिन आराम उनको नहीं मिला, क्या
1: जी,
0: करें?
1: गैस की दवा जो आप सही बताया उन्होंने, इसको हम लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं,
0: जी
1: जिसमें कि साइलेंटली आपको फील नहीं होगा कि आपका एसिड ऊपर आ रहा है, बट पेट से एसिड ऊपर आता है और हमारे गले में जो है वो स्वेलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से मरीज को गले में ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फंसा हुआ है।
0: जी
1: तो एक तो इनको खाने पीने में बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होंगी, तेल चिकनाई का खाना बंद करना होगा और खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। खाना जो है थोड़ा हल्का खाना है, स्मॉल और मल्टीपल मील,
0: जी जी
1: थोड़ा थोड़ा खाएं मगर दिन में ज़्यादा बार ही खाएं, और चाट पकौड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, इन सब का परहेज भी करना होगा, और दवाई भी रेगुलर इनको 1.5 से 2 महीने के अलावा खानी होंगी, तब जा करके ये ठीक रहेंगी।
0: जी इसके साथ साथ सर पूजा का दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्हें लेटने पर राइट साइड में चक्कर आते हैं, इसका रीजन क्या है?
1: इसका रीज़न जो है मैडम, आपके जो हमारे ईयर में जो बैलेंसिंग कैनाल्स हैं उसमें किसी एक कैनाल में आपके पार्टिकल मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो गया है। तो
0: जी
1: इसकी वजह से जब हम वो करवट चेंज करते हैं तो वो पार्टिकल जो है हमारे जाकर के बैलेंसिंग ऑर्गन को स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है।
0: सर एक
1: तो
0: और मैसेज है हमारा, हमें हमारे पास दिल्ली से गायत्री का, वो लिख रही हैं कि जब ये सुबह उठती हैं तो उन्हें चक्कर और सिर में भारीपन लगता है।

0: ऐसा रोज़ नहीं, कभी कभी होता है, और चलते हुए नीचे या ऊपर देखने पर चक्कर जैसा महसूस होता है। बीपी शुगर चेक कराया, दोनों समस्या नहीं है।
1: जी मैडम, अब इसमें बेसिकली सुबह सो के उठने के बाद अगर तुरंत हो रहा है तो कई बार हमारा वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है कि हम सिटिंग से जब स्टैंडिंग पोजिशन में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो टाइम बिंग ड्रॉप करता है। तो उसके लिए एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें
0: जी,
1: पानी खूब पिए और अपना प्रॉपर स्लीप लें। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वही ENT स्पेशलिस्ट, वर्टिगो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए।
0: सर, आपने स्लीप की बात की, तो क्या रात में देर से सोने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है ये वर्टिगो?
1: हाँ मैडम,
0: सुबह उठने पर या
1: अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग तो सब नॉर्मल ही रहेगा, तो कई बारी चक्कर को अच्छे से पेशेंट जो है डिफाइन भी नहीं कर पाता कि मुझे चक्कर है। कई बारी सर भारी को भी पेशेंट ये बोलता है मुझे चक्कर है, कई बारी जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी होती है तो भी पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एक तो चक्कर की डेफिनेशन पहले तो जब पेशेंट दिखाता है तो उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, गोल गोल घूमा लगता है या आप गोल गोल घूमते हो या चीजें गोल गोल घूम रही या आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। तो इन चीजों में डिफ्रेंशिएटेड करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसको एक्चुअल में चक्कर की प्रॉब्लम है कि नहीं है।
0: जी सर, इसी से जुड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो वर्टिगो की समस्या है क्या ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, और जीवन शैली में सुधार और खान पान में अगर ध्यान दें तो कितना काम कर सकता
1: जी
0: है?
1: मैडम, ये चक्कर की जो बीपी की प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो, ये यूजली फीमेल्स में होती है, मतलब मोर कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी रहती है जल्दी, 45 के बाद में सभी को कैल्शियम डिप्लीशन होता ही है, और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड हो गया, और आपको साथ में जो है कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और कई बारी हम ध्यान नहीं देते, माइनर हेड ट्रॉमा भी हमारे को ये पोजिशनल वर्टिगो करा सकता है। पार्टिकल नॉर्मल जगह से इस जगह पर कैनाल में ला करके बैलेंसिंग कैनाल में शिफ्ट कर सकता है, ट्रॉमा भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
0: कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती है जिनसे ये होता है या ये सिर्फ मिथ है?
2: मैं बोलता हूँ तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं। काफ़ी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप नमक से सैचुरेटेड डाइट को लेते रहते हैं बहुत लंबे समय तक या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको मीनियस डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है, या फिर ये कि आपको टिनिटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, या आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और इतना ज़्यादा वज़न उठाते हैं जो कि आपकी नेक और शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ का ख़तरा भी रहता है। तो ये दो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्टिगो के लिए सीधी जिम्मेवार हैं, ऐसा समझा जा सकता है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोले तो वर्टिगो करेगा, लेकिन हाँ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो कि 4-6 घंटे तो आजकल नॉर्मल है ही, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है 12 घंटे 16 घंटे आप स्क्रीन देख रहे हो तो उसके बाद में जब आप
0: फोन लैपटॉप
2: डिजिटल दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है, एक चीज़ होता है वर्टिगो, दूसरा होता है डिजीनेस, तो दोनों अलग अलग तकलीफ है और अलग अलग बीमारियों का संकेत देती हैं। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ रहा है, या तो आप घूम रहे हैं या आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, घूम कोई नहीं रहा है लेकिन सेंसेशन है। डिजीनेस का मतलब है कि आप अनस्टडी हो गए हैं। अब अनस्टडीनेस ये भी हो सकता है क्योंकि आपका सिर घूम रहा है, आप नहीं घूम रहे, आपका सिर घूम रहा है, लेकिन सिर घूमने की वजह से आप अनस्टडी हो गए, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजीनेस जो है वो वर्टिगो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हाँ, जब वर्टिगो डिजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑरा होता है, जैसे मीनियर्स में ऑरा होता है, तो मीनियर्स का जो ऑरा है वो एपिलेप्सी के ऑरा जैसा हो सकता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी का ऑरा, और दोनों एक किस्म से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आँखों के सामने तारे टिमटिमाना या सिर में एकदम से घुमावदार सेंसेशन पैदा होना, या फिर मूड खराब होना, उल्टी होना, जी मितलाना या बेहोशी जैसी सेंसेशन होना। अल्टीमेटली चाहे वर्टिगो हो या डिजीनेस हो या दोनों एक साथ हो, तो एक थोरो इवैल्यूएशन तो चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है कि कॉज क्या है।
0: सर, स्ट्रेस कितना इसके लिए जिम्मेदार है या स्ट्रेस से वर्टिगो होने के

0: चांस हैं?
1: वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ये अंडररेटेड है। दुनिया में 80 करोड़ लोगों को वर्टिगो है और 30 से 40% जनसंख्या दुनिया की ऐसी है जिन्होंने वर्टिगो एक्सपीरियंस किया है। ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को वर्टिगो का एक एपिसोड तो होता ही है।
0: जी
1: ये इतनी कॉमन आम बीमारी है।
0: जी
1: तो अब बात आती है कि स्ट्रेस तो यूबिक्विटस है, हम सबको स्ट्रेस होता है। जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो यू स्ट्रेस है तो वो तो सही है, लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है तो इनएस्केपेबल हो जाता है, तो तब ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी जनरेट हो और एंग्जाइटी की वजह से आपको स्पिनिंग सेंसेशन
0: जी
1: हो।
0: आप दोनों से जानना चाहूंगी कि क्या ये वर्टिगो जड़ से खत्म हो सकता है?
2: डिपेंड करता है मैडम कारण क्या है।
0: जी
2: अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, सेंट्रल लीजन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के मैं बोलता हूँ वर्टिगो जड़ से ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हमारा
0: जी
2: ये पोजिशनल वाला है, इसमें पार्टिकल बार बार ही फॉर्मेशन होने की कई बार टेंडेंसी होती है, तो उसको आप विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच रखें, कैल्शियम लेते रहें और मैग्नीशियम भी लेते रहें, मैग्नीशियम का भी रोल आ गया है आजकल, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो ये बेसिक अपना रखेंगे अच्छा नॉर्मल,
0: जी
2: इस पर ख्याल रखेंगे हाइजीन पर, तो आपके जो इंसिडेंसेस हैं, जो होने की टेंडेंसी
0: जी
2: है, वो कम हो
0: जी
2: जाएगी।
1: जी प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, जंक फूड से बचें, तो मिडल ईयर का प्रेशर भी कम रहेगा।
0: जी
1: और इसके अलावा आपको जो हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो एक किस्म से टू सम एक्सटेंट प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन हाँ ये करके इसको बीमारी को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको काबू में किया जा सकता
0: जी
1: है।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या ये वंशानुगत है और गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है?
1: पहले सवाल का जवाब तो है
0: जी
1: ना, मतलब ये
0: वंशान
1: जेनेटिक नहीं है।
0: जी
1: जहाँ तक प्रेग्नेंट वेमेन की बात है, देखिए प्रेग्नेंट वेमेन में वर्टिगो का कोर्स सेम होता है एज दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वेमेन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं कि अगर चक्कर खा के गिर गए तो दो नुकसान होंगे, बेबी को और मदर को।
0: जी
1: सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर दूसरा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए वजन बढ़ता है, 9-10 किलो तक वजन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर में चेंज आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है, तो वर्टिगो की संभावना भी आम लेडी से थोड़ी ज़्यादा होती है।
0: डॉक्टर आप क्या
2: जी
0: कहेंगे?
2: मैडम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो जैसा सर ने बोला कि ख्याल तो रखना ही है और डबल रिस्क भी है,
0: जी
2: तो इसलिए आपको अपना डॉक्टर से, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करते हुए कैल्शियम वगैरह अपना टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम दे रहे हैं तो डॉक्टर बेकार में दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब, समय बहुत कम रह गया
2: जी
0: है,
2: जी
0: तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि वर्टिगो की समस्या ना हो, इसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकें?
2: मैडम,
1: जी
2: एक तो पहले
0: जी
2: अपना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, और आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो रही हैं हमारे मोबाइल एब्यूज़ की वजह से, ओवर
0: जी
2: यूज़ की
0: जी
2: वजह से, तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आजकल टिनिटस और डिक्रीज हियरिंग भी हो रहा है। और बाकी जैसा मैंने बोला, विटामिन डी, हाइड्रेशन, और सर ने भी जैसे अभी बोला था कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे नेक में डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अपने एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट में ही अच्छी रहती हैं, तो वही करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर
1: बाकी
0: वीर
1: सर,
0: जी
1: हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स। सो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो ये जो इंजरी की संभावना कम हो जाएगी और जो बाकी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनका चांस कम हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नर्व्स मजबूत होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, या जो ट्रांजियंट इस्कीमिक अटैक है उसकी संभावना कम हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए इन जनरल जरूरी है।
0: हाइड्रेट रखें उसके साथ
1: हाइड्रेट
0: साथ।
1: रखें, बिल्कुल गर्मी में बहुत आवश्यक है।
0: जी, और उसके साथ फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखें,
2: जी
0: बहुत जरूरी है
1: हाँ, ये
0: ये।
1: अभी कोई 1 महीना पहले हमने कार्यक्रम किया था डिजिटल डिमेंशिया में, तो उसमें एक टीनेजर को आकाशवाणी ने बुलाया था, शी वॉज ऑल ऑफ 14 ईयर्स, तो उसने काफ़ी अच्छा बोला कि देखो मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दुनिया जो मोबाइल से बाहर है, दुनिया पार्क में है, दुनिया साइकिलिंग में
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: स्विमिंग में
0: बिल्कुल
1: है।
0: बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वर्टिगो सिम्टम कॉजेज एंड क्योर्स है, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर विकास ढिकव जो है न्यूरो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो है ENT

0: स्पेशली डॉक्टर साहब, आप दोनों यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मींस प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के

0: ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में, और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को

0: ज़्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफ़ी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है, वो ग्रह 4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटीरियल से बनाया जा रहा है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है, जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज, यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह, यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं, तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी, तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लीकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: मैं पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पे काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यार।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है। और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आमी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आमी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायो मेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: और सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना, और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है,

0: ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWAs और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया
1: जाता है। बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक

0: टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा, तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। अपना

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 5:05 हिना मौज का आदाब कबूल कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से वेलकम वेलकम। सिटी लाइट्स प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आज दिल्ली और एनसीआर में होने वाली सरगर्मियों से रिलेटेड करेंगे बात और करेंगे मानसून का स्वागत जो आज रिमझिम रिमझिम बरस रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम की जिसका नाम है सिटी लाइट्स। आकाशवाणी FM रेनबो पर सुनेंगे आप ये प्रोग्राम।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। नवंबर 1997 को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का गठन हुआ। प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत उठाए गए इस कदम के साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन को इसके अधीन लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों बड़े प्रसारण संस्थानों को प्रशासनिक, संचालनात्मक और संपादकीय स्वायत्तता प्रदान करना था। इस बड़े बदलाव के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के अंतर्गत दो अलग अलग इकाइयों के रूप में कार्य करने लगे। ये पहल देश के लोक सेवा प्रसारक को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के 90 इयर्स जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में रोज़ कोई ना कोई ऐसी अच्छी और नई बात आपको पता चलती है हमारे इन एपिसोड्स में जो आकाशवाणी 90 के से रिलेटेड हम पेश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन्स पहुंच रही होंगी जो आप आकाशवाणी के हवाले से जानना चाहते हैं। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए सिटी लाइट्स में, तो मौसम आज बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि दोपहर में इतनी तेज़ धूप के बाद, थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद ही बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है और मौसम थोड़ा सुहाना सा हो गया है। इससे पहले कि मैं आपको बताती कि दिल्ली एनसीआर में मौसम के हवाले से, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम में बारिश और गरज चमक की संभावना है। IMD के अनुसार मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की उम्मीद है। ये जानकारी आप तक पहुँचाने से पहले ही छमछम बारिश आप तक पहुँच चुकी है। 5:17 और हुए 48 सेकेंड। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर सिटी लाइट्स प्रोग्राम में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की
4: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

5:25 और 44 सेकेंड्स हिना मौज के साथ हैं आप सिटी लाइट्स प्रोग्राम में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों कल यानी 5 जून को हम मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, और इसके उपलक्ष्य में 4 से 6 जून तक इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो 2026 आयोजित किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और हरित तकनीकों से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले सकते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए अपने से रिलेटेड जो वो ये काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड बता सकते हैं, वहाँ पे शो कर सकते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और बहुत सारी चीज़ें जो एक आम इंसान नहीं जानता और उसके अंदर उस सुधार की ज़रूरत है वो इन सब से बहुत अच्छे से साबित होगा और आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन करके वहाँ से निकलेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिल्ली एनसीआर में इवेंट्स के तौर पर होती रहती हैं और हो रही हैं, और आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर भी जा सकते हैं क्योंकि आने वाले जो वक्त है उसमें हमारे बच्चे ही स्वच्छता का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं अगर उन्हें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखने के लिए, अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए, और उस सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ जाकर आपको मिल सकती है और आप छुट्टी में अच्छी और बेहतरीन तरीके से इस एक्सपो में जाकर अपने वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और करेंगे बहुत सारी सिटी की बातें, एनसीआर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सिटी लाइट्स में।

5:33, हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। आज हम आपको दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है सिटी लाइट्स में जो आपको क्लाइमेट और ट्रैफिक से रिलेटेड भी हम देते हैं, वो भी हम देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जो कल 5 जून से जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में दिल्ली क्लाइमेट इनोवेशन वीक 2026 भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो 4 से 6 जून के दौरान ग्रेटर नोएडा में जल वायु परिवर्तन, सतत विकास और पर्यावरण नवाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और किए जा रहे हैं इस तरीके के प्रोग्राम्स, जहां पर जाकर इनोवेटिव चीज़ें आपको पता चलेंगी जो पर्यावरण से रिलेटेड हम कर सकते हैं और हम उसमें अपना तावुन दे सकते हैं, अपना समर्थन दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आने वाले अपने जनरेशन हैं उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में पेड़ पौधों का ख्याल रखा जाए, अपने एनवायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं वो हम करें, और बेवजह कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, स्वच्छ रहने की कोशिश करें, अपने आप को भी, अपने गली मोहल्ले को भी, अपने घर को भी, अपने आसपास के कोई भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, जैसे आप पार्क में जाते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारी भी खुद निभाएं, या आसपास आप अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या किसी भी और मोहल्ले में आप जाकर किसी से मिलते हैं जुलते हैं, जहाँ पे भी आपका आना जाना है, एटलीस्ट वहाँ पर तो हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए भी बेहतर हो और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी स्वच्छता का काम करें। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सिटी लाइट्स हिना मौज के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

5:43, 21 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं, सिटी लाइट सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि यातायात से रिलेटेड यानी ट्रैफिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का माहौल है ये तो मौसम ने आपको बता ही दिया है, क्योंकि राजधानी में छमछम बरसती बूंदें जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी की वजह ट्रैफिक पे तो बन ही जाती हैं। राजधानी में मौसम के बदलते हुए मिजाज और बारिश के कारण दोस्तों कुछ मार्ग ऐसे हैं जो यातायात जिनकी धीमी होने की संभावना है, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो चुका है, सब अपने अपने घर लौटेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ी वगैरह लेकर निकलते हैं तो उस वक्त ये सोचने वाली बात है कि सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो इस मौसम में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जब उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो धीमी रफ्तार कहाँ कहाँ हो सकती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ITO दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के कुछ एरियाज़ और NH9 कॉरिडोर जो है वहाँ ख़ास तौर पर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ से अवॉइड करें निकलना ताकि आपको ट्रैफिक में आप ना फंसें और आप खैर खैरियत से अपने घर पहुँचें। घर से निकलने से पहले भी ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी ज़रूर लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप अपने मार्ग को डाइवर्ट कर सकें, किसी और रास्ते से निकल जाएं। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लेकर निकलें ताकि आप टाइम से जहां आपको पहुंचना है वहां आप पहुंच सकें।

जी हाँ, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं हमारे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे अब फ्री हो चुके हैं और पढ़ाई से दूर भागना बच्चों की फितरत में होता है। कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इस तरीके की हो रही होती हैं जिसमें इन्वॉल्व करके हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे अपनी अंदर की जो रचनात्मक चीज़ें हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो निकाल सकें। तो एक चीज़ बताती हूँ, वैसे तो आपके आसपास भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का रीडिंग चैलेंज 2026 पूरे जून महीने चल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए पढ़ाई और क्रिएटिविटी बहुत सारी वो लोग डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आयोजित करें जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी भी बाहर निकल कर आए और पढ़ाई भी वो मज़े से हंसते खेलते कर लें। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को इसी तरीके की क्रिएटिविटी और एक्टिविटी में डालने की, ताकि उनकी छुट्टियां जो हैं वो मज़े से भी गुजरें और कहीं ना कहीं हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए, उनकी पढ़ाई भी हो जाए, है ना।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हजूर, अब आप सबको खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चला। 5:54 ये लास्ट ट्रैक आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। बस चलते चलते यही कहूँगी कि एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी, लेकिन ख्याल भी रखिए साथ में, और कोशिश कीजिए इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने का, लेकिन ख्याल के साथ। अपने आप को ट्रैफिक से थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए चलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। खैर खैरियत से सब अपने घर पहुँच जाएँ और हमारे प्रोग्राम ज़रूर इन्जॉय कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइन अप हैं। अभी भी 6 से आप सुनेंगे प्रोग्राम गीता के साथ मैसेज मसाला मिक्स। उसके बाद आपके साथ कौन रहेगा ये भी बताए देते हैं आपको। सुशांत मल्होत्रा के साथ वेस्टर्न म्यूजिक में रहेंगे आप, आकाशवाणी रेनबो पर सुनेंगे ये प्रोग्राम। इसके बाद गीता चौधरी लेकर आएंगी म्यूजिक मस्ती 8-9 के बीच। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आखिरी ट्रैक आपके लिए फिलहाल हिना की तरफ से सायनारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, वेल टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक ठीक 6:05। ये है 102.6 FM। मैं हूं गीता आपके साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जहां हम बात कर रहे हैं आज उन एहसासों की जिन्हें लोग अक्सर छुपा लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। एक नकली हंसी है जो हमेशा उनके फेस पर रहती है। सोशल मीडिया की चमक दमक से भरी इस दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आता है, लेकिन और इसके साथ ही हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत पल साझा कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियां दिखा रहा है और ये साबित करने में लगा है दोस्तों कि जब सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रही है हमारी ज़िंदगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। या फिर ये जो मुस्कुराहटें हैं कहीं ना कहीं उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को छिपाने का ज़रिया बन गई हैं जिनके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता है। ख़ास तौर से आज की जो जनरेशन है उसके पास सुविधाएं हैं, अवसर हैं, टेक्निक है इतनी लेटेस्ट, लेकिन क्या उनके पास वो सुकून भी है जिसकी तलाश हर इंसान को होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखने पर ज़्यादा लगे हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज की जनरेशन वास्तव में पहले से ज़्यादा खुश है या फिर वो अपनी असली भावनाओं को छिपाकर एक परफेक्ट लाइफ का जो इल्यूजन है वो क्रिएट कर रही है, एक भ्रम क्रिएट कर रही है? तो ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, ज़्यादा बात नहीं करूंगी। तो आज का टॉपिक भी ऐसा ही है दोस्तों। क्या आज की जो पीढ़ी है, क्या आज की जो जनरेशन है वो सच में खुश है या फिर सिर्फ खुश दिखाई देने की कोशिश कर रही है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस जो आप डे टू डे की लाइफ में आपके साथ होते हैं, आप देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं उनको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9868107070 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने दिल की बात मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए और मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। सो स्टे ट्यून्ड।

सोनू बिहार सॉरी बिजनौर से जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं कि अक्सर मैं सोशल मीडिया पर यही देखता हूं, अपने हर गम को छुपाना, हर दूसरे को बेहतर दिखाना कि हर इंसान कोशिश करता है, मतलब अपने को खुश दिखाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर यही दिखाते हैं लोग। कई बार मैंने अपने चाहने वालों को भी अक्सर यही देखा है कि कोई अच्छा सा स्टेटस लगा देते हैं और अच्छी डीपी ही लगा देते हैं, पर उनका मकसद यही होता है कि हम दूसरों को बेहतर दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच सोनू जी।

वेलकम बैक। टाइम हो गया है 6:14, प्रोग्राम ट्रिपल एम यानी मैसेज मसाला मिक्स, और आपके मैसेजेस मेरे स्क्रीन पर एकदम से सितारों की मानिंद झिलमिला रहे हैं। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि मेरे विचार से आज की पीढ़ी खुश भी है और परेशान भी। तकनीक, शिक्षा और अवसर पहले से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए खुश रहने की कई वजह हैं उनके पास, लेकिन दूसरी ओर प्रतियोगिता, करियर का दबाव, रिश्तों में दूरी और सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया के कारण बहुत से लोग अपनी असली जज्बात छुपा लेते हैं। ट्रू। आगे लिखते हैं कि आज अक्सर लोग अपनी प्रोफाइल पर मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दिल में तनाव, अकेलापन या कोई दर्द लिए होते हैं। हर मुस्कान के पीछे खुशी हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी खुश रहने की कोशिश तो करती है, लेकिन कई बार अपने गम और जज्बात दुनिया से छुपा कर रखती है। फैंटास्टिक लाइन सरफराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी यही ऐड करना चाहूँगी आपके मैसेजेस के साथ कि आजकल लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, मनोरंजन की सुविधा है, लेकिन अगर कुछ कम है तो वो है सुकून। पहले लोग कम चीज़ों में भी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि जो रिश्ते होते थे उनमें अपनापन होता था। आज लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन अपने बहुत कम हैं। जिनको वो वाकई में अपना कहें वो बहुत कम लोग हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, आज लोग दिन भर लोग ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन दिल की बातें करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। जब टाइपिंग देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, अच्छा कोई टाइप कर रहा है मेरे लिए, लेकिन सामने बैठकर किसी को सुनने का जो पेशेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक और मैसेज मेरे पास आया है, लिखते हैं, क़ैद के एक दायरे में बड़ी बेहिसाब दुनिया, न जाने किसी का दर्द, ये पत्थर मिजाज दुनिया, अपना है कौन गैर ये पहचानना भी मुश्किल, रखती है अपने चेहरे पे कुछ इतने नकाब दुनिया, इतने नकाब दुनिया। अच्छा बहुत खूबसूरत, लिखने वाले पता है कौन है, प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत। कुछ हमारे लिसनर्स हैं ना, वो इतना प्यारा लिखते हैं, वाकई में दिल के अंदर अंदर तक घर कर जाती है उनकी लाइनें। आगे और लिखा है इन्होंने कि इंसानियत के गीत की सरगम लिए हुए एहसास से भूख और तमाम गम लिए हुए, मेरी हर खुशी खुदा तू उनको बांट दे जो जी रहे हैं प्यार के परचम लिए हुए। वाह, थैंक यू सो मच। आज की जनरेशन तकनीक और सुख सुविधाओं से खुश तो है, लेकिन उतना ही जल्दी वो भटक भी जाती है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। पढ़ाई हो या करियर, दोनों में अच्छे से सफल तो हो रही हैं, लेकिन उनमें सभी चीज़ों को जल्दी से हासिल करने की जो चाह है वो बहुत ज़्यादा है। ये मैसेज लिखा है मुझे प्रवीण चौहान ने खरगोन मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो रही है। हर किसी के ऊपर किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी या तो करियर का होगा, किसी न किसी बात का ना वो प्रेशर लिए होते हैं हमेशा। कभी करियर की चिंता है, कभी किसी को रिलेशनशिप की चिंता है, कोई फ्यूचर को लेकर परेशान है, कोई सिर्फ इस डर में जी रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस कोशिश में लोग खुद से ही बहुत दूर होते जा रहे हैं। अब लोग अपने इमोशंस छुपाना सीख गए हैं। आई एम ओके आज सबसे बड़ा झूठ बन गया है।

दिनेश कुमार भंडारी मेरे साथ जुड़े हैं तुलसीपुर नेपाल से। अरे वाह, वेरी गुड। इतनी दूर से जब लोग लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब एफएम रेनबो कहाँ कहाँ सुना जाता है। थैंक यू सो मच दिनेश कुमार जी आपका, और वेलकम है इस प्रोग्राम में। आगे ये लिखते हैं कि पिछली जनरेशन में भी जो दिख रहा है अक्सर वो होता नहीं है।

चेहरे में मुस्कान देखी, वॉलेट में पैसा, और जब नहीं हो तो ये फिर भी दिखाने के लिए अच्छी बाइक, अच्छा मोबाइल, ऐसी बहुत सारी हिंदी थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे लिखी है, लेकिन मुझे समझ आ गया है। दिनेश जी थैंक यू सो मच, आप यही कहना चाह रहे हैं कि चेहरे पर मुस्कान और वॉलेट में पैसा हो और बस यही सब कुछ, और एक अच्छा सा मोबाइल हो, मतलब सबकी लाइफ ऐसे ही दिखती है दूर से, लेकिन अंदर से वो कितने खुश हैं। उनके पास एक अच्छा फ़ोन भी है और पैसे भी हैं, लेकिन चेहरे की जो खुशी है ना वो सब नकली है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने मतलब मैसेज तो किया मुझे इस प्रोग्राम में।

मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं। ये लिखते हैं कि आज की बात पे कहना चाहता हूँ कि आज के समय में दूसरे के पास किसी तरह से कोई प्रॉब्लम का को लेकर जाओ तो मजाक भी बनता है। इसलिए मेरा मानना है कि हर हाल में खुश रहो और लोगों को भी खुशी का मौका दो। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने, थैंक यू सो मच।

गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिखते हैं कि मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। लिखते हैं, अपनी परेशानी को भुला देता हूँ मैं, यारों की महफिल में मुस्कुरा देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, उसका जवाब दीजिए।

प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं कि सिस्टर गीता जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे टूटे फूटे शब्दों को अपनी सुमधुर आवाज़ में प्रस्तुत करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, हमें फ़ख्र है आप पर। थैंक यू सो मच, मेरे पास भी शब्द नहीं है, आपने हमें क्या मुकाम पेश किया है, थैंक यू सो मच।

देहरादून से अलोक पवार और मिन्नी लिखते हैं कि शुभ संध्या रेखा चौधरी जी। मैं रेखा नहीं हूँ, मैं गीता हूँ। आगे लिखते हैं कि सोशल मीडिया की क्रांति लोगों की बेफिक्री खत्म हो गई है। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर तनाव में है, कभी बीपी शुगर और कभी बीमारियां बढ़ रही हैं। मोबाइल को छोड़कर कुछ अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के लिए निकले, उनके साथ बैठे बात करें, तनाव दूर होगा। सही लिखा है आलोक पवार जी और मिन्नी, आपने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। देखिए सोशल मीडिया, जब हम ज़्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं तो सोशल मीडिया ने हमें क्या चीज़ सिखाई है? सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट बहुत कम किया है। अब सोशल मीडिया से हम एक दूसरे को कंपेयर करना सीख गए हैं, तुलना करते हैं। अब खुशी हमें अपने अचीवमेंट से नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी देखकर डिसाइड होने लगी है। किसी की कोई घूमने जाता है, किसी की ट्रिप देखकर लगता है कि यार हमारी लाइफ तो बोरिंग है, और किसी की सफलता को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए। और इसी कंपैरिजन ने लोगों की जो इनर पीस है, जो आंतरिक शांति है, वो कहीं ना कहीं छीन ली है, कम हो गई है। और सच तो यह है दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी बात की लड़ाई से गुजर रहा होता है, जो सबसे

हंसता है, ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा खुश है। कई लोग रात को सिर्फ इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है और दिल में बहुत अकेलापन है।

महिंदा सुल्ताना फ्रॉम जम्मू कश्मीर राजौरी से जुड़े हैं, लिखते हैं कि ये जनरेशन प्रेशर और अनसर्टेनिटी के बावजूद हर चीज़ को एडेप्ट कर रही है, लेकिन वो ओवरथिंकिंग इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। सही कहा आपने, ओवरथिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ओवरथिंकिंग से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चीज़ों के प्रेशर को तो झेल लेती है जनरेशन, लेकिन कहीं ना कहीं शो ऑफ बहुत ज़्यादा है आज की जनरेशन में, ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा।

भुवनेश जुड़े हैं अशोक व्यार दिल्ली से, लिखते हैं हाउ आर यू, आई एम फिट एंड फाइन, आप कैसे हैं आप बताइए। लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट पीपल शो दैट दे आर वेरी मच हैप्पी ऑन सोशल मीडिया बट दे आर इन अटेंशन ड्यू टू सम रीजंस। द रियल हैप्पीनेस इज विद इन आवर सेल्फ्स। इफ वी आर हैप्पी एंड पॉजिटिव एवरीथिंग अराउंड अस विल बिकम ब्यूटिफुल। फैंटास्टिक लाइन लिखी है आपने भुवनेश जी, सही बात है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिविटी से देखेंगे तो चारों तरफ हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं और हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल का माहौल है या क्या कहें, या तो ओवर प्रेशर कह लीजिए, ओवर बर्डन कह लीजिए, स्ट्रेस कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई।

0: मोहम्मद सरफराज आलम दोबारा से जुड़े हैं, लिखते हैं, सोशल मीडिया की चमक में हंसी का अंदाज रखते हैं, दिल में अगर कई अनकहे से राज रखते हैं। महफिल में गूंजती रहती हैं खुशियों की आवाज़, तन्हाई में टूटे हुए ख्वाबों के साज रखते हैं। चेहरे को देखकर हरगिज हकीकत समझ न लेना, लोग मुस्कानों के पीछे भी एहतियात रखते हैं। फलसफाई दौर बस इतना समझ में आया है, जो सबसे ज़्यादा हंसते हैं वही कुछ राज रखते हैं।
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइन्स।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:32। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और ये है 102.6 एफएम रेनबो। मैं हूँ गीता। वेल, आज का शो एंड प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही है? इफ यस, प्लीज डू राइट इनटू रेनबो 102.6 एफएम @gmail.com, क्योंकि आपके जो मेल्स हैं वो भी हमारे प्रोग्राम की बहुत हौसला अफजाई करते हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:39 हो चुके हैं। प्रोग्राम है ट्रिपल एम, जिसे आप और हम कहते हैं मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ गीता, यह है 102.6 एफएम रेनबो। और आज का सवाल जो मेरी नई दोस्त अभी इस वक्त जिन्होंने ट्यून इन किया है उनके लिए बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आज की जो पीढ़ी है, क्या आज की जो जनरेशन है वो सचमुच में खुश है या फिर सिर्फ खुश दिखाई देने की कोशिश कर रही है, ड्रामा कर रही है, एक इल्यूजन बनाकर रख रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, मुझे मैसेज करके बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

राकेश वोरा बुरारी दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं कि आज के बच्चों को वो सब मिल जाता है जिसे पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, इसलिए उन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। फैंटास्टिक लाइंस लिखी हैं राकेश वोरा जी आपने, बिल्कुल सही बात है। आजकल के बच्चों को चुटकियों में मतलब ये चाहिए मम्मी, ये चाहिए पापा, तुरंत हाजिर। लेकिन जब हम छोटे थे तो एक चीज़ के लिए हमें कई दिनों मम्मी पापा को मनाना पड़ता था, पापा प्लीज़ ये चीज़ दिलवा दीजिए। यही एक डिफरेंस बहुत बड़ा है कि आजकल के बच्चे उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, जो कि उनको वैल्यू करनी सीखनी पड़ेगी।

गुड्डू धाकड़ एमपी से उज्जैन ज़िले से जुड़े हैं, लिखते हैं कि सही बात तो यही है कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल की जनरेशन है, दिखावे की हंसी के साथ जिंदगी जी रही है, सुकून कहीं खो गया है। परफेक्ट, वेल सेड गुड्डू धाकड़ जी, सही कहा आपने। आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक दिखावटी पन में जी रहे हैं, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। वहीं अगर रिश्ते निभाने वाली बात भी करूँ ना, तो पहले के लोग रिश्तों को निभाने की कोशिश करते थे, अब लोग बहुत जल्दी रिप्लेस करना सीख गए हैं। पहले छोटी छोटी बातों में पर लोग घंटों बात करते थे, याद है गांव की चौपाल पर बैठकर घंटों किसी एक विषय पर अगर डिस्कस शुरू हो जाता था तो घंटों बीत जाते थे। अब छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं, मुझे नहीं बात करनी। मुझे जो लगता है कि आज ईगो रिश्तों से बड़ा हो गया है और साइलेंस इमोशन से ज्यादा लाउड हो गया है, ये आजकल की सच्चाई है। थैंक यू सो मच गुड्डू धाकड़ जी मैसेज करने के लिए। और मेरे साथ और जुड़ी हैं मेरी दोस्त, लिखते हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम रितिका आर्या है और मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ आपको लिखना है, मैसेज कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में उसे अपने से नीचे वाले लोगों को दिखा करके खुश रहना चाहिए, तो इससे ज़्यादा बढ़कर कि और कोई खुशी नहीं है। अगर हम उससे बेहतर हैं तो अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, तभी सब कुछ खूबसूरत और अच्छा लगता है। थैंक यू जी।

दानिश खतौली से लिखते हैं कि गीता मैम कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने गीता मैम और हमको आपस में मिला दिया है। जी हाँ, थैंक यू सो मच, ये सोशल मीडिया का ही एक ताकत है। पर अपने को दूर कर दिया है खुशी से और गम भी। गीता मैम, आप ये टॉपिक आपका ये टॉपिक पसंद आया है, हर बार ये टॉपिक लाता हूँ, आपकी वॉइस अच्छी है, नाइस प्रेजेंटेशन, गाने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए।

रामधारी अवाना जी जुड़े हैं मेरे प्रोग्राम में, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, कोशिश करूंगी पढ़ूंगी। लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को शुभ संध्या। आज व्यक्ति अधिक पाने की लालसा, नींद की कमी, रिश्तों में बढ़ती दूरी, डिजिटल थकान और दूसरों से निरंतर तुलना के कारण वास्तविक खुशी से दूर होता जा रहा है। इसी भाव को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ, जी करिए। आज आदमी खुश तो दिखता है पर असली खुशी खो बैठा है, होठों पर मुस्कानों का मेला है, आंखों में सन्नाटा बैठा है, महफिल में ठहाके गूंजते हैं, दिल फिर भी वीरान रहता है, दुनिया संग हंसने वाला इंसान खुद से ही अनजान रहता है। थैंक यू सो मच रामधारी अवाना जी, आपने कहाँ से, गांव डाड़ी, कुतुबपुर तहसील और ज़िला हांसी हरियाणा से, ये मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े थे। नीचे लिखा है प्लीज़ शामिल कर लीजिए, जी आपका मैसेज मैंने प्रोग्राम में शामिल कर लिया, थैंक यू सो मच। लीजिए, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी थोड़े से नाराज हो गए, लिखते हैं कि हमने 6:21 पर टॉपिक से रिलेटेड मैसेज भेजा था लेकिन आपने अभी तक हमारा मैसेज रीड नहीं किया है। चलिए, आपका मैसेज अब खुशी हो गई होगी, आप ऐसे नाराज ना हुआ करें, मैंने कई बार आपको बोला है। आज लिखते हैं कि आज मोबाइल के कारण फेस टू फेस मिलना लगभग ख़त्म हो गया है। आज की जनरेशन में करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस है, पहले जॉइंट फैमिली कल्चर होता था, बच्चे अपने परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, आपके सानिध्य और जीवन बहुत सुंदर और सुखमय हो। थैंक यू सो मच आपका मैसेज करने के लिए, और आपने बिल्कुल सही लिखा है, मोबाइल की वजह से लोगों में जो डिस्टेंस है, लोगों में जो दूरी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक घर में अगर मान लीजिए 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं या 2 कमरे हैं, तो उसमें हर बंदा अपना कोना लेकर किसी ना किसी कॉर्नर में बैठा होगा, कोई सोफे पर, कोई बेड पर लेटा होगा, अपने फ़ोन में वो स्क्रॉल कर रहा होगा रील्स, आपस में कोई बातचीत नहीं होती। ये है ताकत, चीज़ें अच्छी हुई हैं सोशल मीडिया के टाइम में, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा।

चंडीगढ़ से अशोक नागरा जी लिखते हैं, राम राम जी, आपको भी प्यारी सी राम राम। लिखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जितने नज़दीक आते हैं उतने ही दूर हो रहे हैं, यही सच्चाई है।

किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़े हैं। लिखते हैं, गुड इवनिंग। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन के पास सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी सभी परेशान हैं क्योंकि आपसी रिश्तों में वो मिठास नहीं रही और दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम तो यही कहना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। वाह, फैंटास्टिक लाइंस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मेरे पास टाइम अभी सिर्फ 10 मिनट हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में, ये मेरी अपनी राय है, अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात बिना जज किए सुन लेता है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात को जज नहीं करता और सुन लेता है, तो उसे कभी मत खोना ज़िंदगी में, उसको अपना बना के रखना है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज़ पैसा नहीं है बल्कि इमोशनल सपोर्ट है। लोग स्ट्रांग दिखते ज़रूर हैं लेकिन अंदर से किसी को भी बस थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन, थोड़ा समझने वाला इंसान बहुत ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में। तो अगर आप भी कभी अंदर से टूटे हुए अपने आप को महसूस करते हैं तो खुद को अकेला मत समझिए। ज़िंदगी हर किसी को किसी न मोड़ पर कमज़ोर ज़रूर बनाती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम खुद को खोने ना दें। थोड़ा समय खुद को ज़रूर दें, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठें, दोस्तों से खुलकर बात करें और सबसे ज़रूरी, अपनी मेंटल पीस को सोशल मीडिया की फेक हैप्पीनेस से कंपेयर ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेल दिस द टाइम हुआ ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:56 हो चुके हैं और यह है 102.6 FM रेनबो. मैं हूँ गीता. प्रोग्राम में अब टाइम नहीं बचा है. स्टूडियो की घड़ी अब इजाज़त नहीं दे रही कि आपसे और बात करूँ. 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार. उसके बाद आपके साथ होंगे सुशांत मल्होत्रा और मेरी मुलाकात आपसे ठीक 8 होगी. तब तक के लिए बाय.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Need further ahead, time for me to take a short and sweet break, but messages, couple of messages to be read. One of them is by Roland. Roland says, great to be with you and is enjoying the show completely, totally. Wow, lovely. And then we've got Pooja Verma saying, loving the show in this lovely weather of Delhi, from Pooja. Well, thank you so much, Pooja and Roland, that you guys are enjoying it. For the rest of the lot, you're driving, drive safely. You got time, message me on 9868107070. We're talking about the hits at memories. Break time up next. I'll be right back after these messages. Do not, and I repeat that, do not touch the dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: Talent to hai, पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल
7: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: फ्री स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:01। प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती। और जिस तरह से पिछले मैसेज मसाला मिक्स में जो प्रोग्राम हमने किया था 7 बजे, आपने जिस तरह से अपने मैसेजेस, विशेज और प्यार से मेरा साथ दिया था, उसके लिए अब एक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मुझे पता है दोस्तों कि आपके इतने सारे मैसेजेस आए कि हर एक मैसेज को ऑन एयर पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बिलीव मी, मैंने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस इस शो का हिस्सा बने। और आपकी पार्टिसिपेशन, आपका जो उत्साह था, आपका जो अफेक्शन था, वो उस शो की वाकई में जो है रियल स्ट्रेंथ है। जब आप अपने दिल की बातें, अपनी यादें और जो अपने थॉट्स हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ये सफ़र और भी खूबसूरत बन जाता है। एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर अनदर म्यूजिकल जर्नी। अब शुरू हो रहा है दोस्तों आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। आई होप ये कार्यक्रम भी आपको उतना ही पसंद आएगा और आपके जो इस शाम को और भी खूबसूरत रंगों से भर देगा। सो स्टे ट्यून्ड इनटू 102.6 FM विद योर आरजे गीता।

वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:26। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और मैं हूँ गीता। वेल, आपके प्यार और सपोर्ट को दोस्तों मैं सलाम करना चाहूँगी। आप जिस लगन और जिस उत्साह के साथ म्यूजिक मस्ती सुन रहे हैं और लगातार अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बड्डा वाला थैंक यू। और हाँ, इस बार मैं सिर्फ गाने ही प्ले कर रही हूँ, आपसे बात भी नहीं कर रही, उसके बाद भी आपके जो मैसेजेस हैं वो लगातार आ रहे हैं। आई होप मेरी प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही होगी और आप इस म्यूजिकल जर्नी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप भी इस वक्त म्यूजिक मस्ती का हिस्सा बने हुए हैं तो अपने मैसेजेस और ग्रीटिंग्स हमें ज़रूर भेजिएगा @fmrainbow102.6@gmail.com। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड कीप इंजॉइंग द म्यूजिक मस्ती, बिकॉज अभी तो म्यूजिक मस्ती का रंग और भी जमने वाला है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 8:57 और सभी आ चुकी हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश आवाज में वो प्रोग्राम करती हैं। प्रोग्राम का नाम है आपकी याद आती रही, आप उनके साथ रहिएगा क्योंकि स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही कि मैं आपसे और बात करूं। आप सभी आगे साथ रहिएगा।
1: मुझे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, आप कहाँ छोड़ के जा रही हैं मुझे?
0: अब मैं आपके हवाले ये जो माइक है ना, खूबसूरत सा माइक और खूबसूरत आवाज के हवाले।
1: अच्छा, तो चलिए आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंप रही हैं तो कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा पाऊं। लेकिन अपने लिसनर्स को जाते जाते बताइए कि आपने मेरी आवाज की तो बात करी, लेकिन आपकी खूबसूरत दिलकश आवाज अब हमारे लिसनर्स कब सुनेंगे?
0: कल सुनेंगे, जो प्रोग्राम आप आज कर रही है ना, कल मैं ठीक 9 बजे अपने लिसनर्स से मुलाकात करने आऊंगी।
1: यही जादुई रंग और 90s के म्यूजिक का इरा आप कल बिखेरने वाली।
0: यस यस,
1: चलिए आपने याद दिला दिया आपके फेवरेट शो जो आप बड़ा खूबसूरती से किया करती थी।
0: ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी। वो पुराने दिन याद आ गए जब हम, तुम और हमारी तिकड़ी हुआ करती थी ना, याद है तुम्हें?
1: जी जी, भारती टैंक 7 o'clock, 8 o'clock आप, नहीं 8 o'clock में, 9 o'clock गीता चौधरी।
0: थैंक यू सो मच सभिया, और थैंक्स अ लॉट मेरे सारे लिसनर्स के लिए, इतना प्यार दिया। मैं चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 9 बजे। टिल देन गुड नाइट।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं हूं आपके साथ, आपके दिल की आवाज आरजे सभिया नकवी। बर्थडे वाला वेलकम है जी। ये गाना मैंने बिल्कुल डेडिकेट किया है खुद को, ये सवाल करते हुए कि यही सवाल आप सभी के दिल में होगा, मेरे लिए तो इतने दिन में कहां रही, कैसे रही और क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल तो लेकर आ गई हूं आपका डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही। फिलहाल 90s का म्यूजिक करें एंजॉय, साथ ही साथ मीठी बातों का कारवां और आपके खूबसूरत मैसेजेस का सिलसिला भी चलता रहेगा। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए अपना डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम आपकी याद आती रही।

वेल दोस्तों, 90s का ये म्यूजिक और बैकग्राउंड में चलता हो ये खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल जिसको आप सुनकर 90s की राह में पहुंच जाते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दिल की आवाज़ और जिस सभी ना कोई बर्थडे वाला वेलकम है जी आप सभी का। जी हाँ, एक ऐसे शो में जिसमें यादों का कारवां हम सब मिलकर समेटते हैं, आपकी कुछ मीठी बातें मेरे दिल तक पहुँचती हैं और मेरी कुछ बातें आप तक पहुँचती हैं। वल गाना ये जो पहला मैंने प्ले किया बिल्कुल से अपने आप को डेडिकेट किया। कभी कभी इंसान को खुद से भी बातें और प्यार कर लेना चाहिए और कहते हैं ना कि अपने आप से जो प्यार करता है वो इंसान हमेशा मस्त मलंग रहता है। इसलिए मैंने भी सीख लिया है खुद से प्यार जताना, खुद के लिए प्यार इकट्ठा करना और खुद से बातें करना। जी हाँ, आप तो हैं ही मेरे दोस्त और साथ ही साथ मैं खुद से भी आजकल मीठी सरगोशियाँ करने लगी हूँ। तो वाल ये गाना मेरे लिए था और सवाल आपके लिए था। ये वाकई दिन तो बहुत हुए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब न जाने कब मुलाकात हो, लेकिन देखिए फिर भी मैंने कोशिश की और इस माह भी हम मिल लिए और इंशाल्लाह आगे भी एक बार और मुलाकात होने वाली है। तो बिल्कुल से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंसान को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अगर उम्मीद आप छोड़ देते हैं तो फिर बाकी लाइफ में रह ही क्या जाता है। इसलिए उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखें, होप अपनी लाइफ के इर्द गिर्द ज़रूर बनाए रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उम्मीद को कोई भी तोड़ सके। तो ऐसी ही उम्मीद थी मुझे और हाँ, मैं कहाँ रही भाई, मैं एक ऐसी जगह रही जहाँ जाकर इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जी हाँ, फिलहाल मैं गई थी अपनी मदर के पास, वहाँ ढेर सारी बातें करी, कुछ उनके दिल की कहानियाँ सुनी, कुछ अपने दिल की बात कही और बहुत सारा इन्जॉय किया, खूबसूरत मौसम को सराहा। यहाँ तो गर्मी है लेकिन वहाँ जहाँ मैं गई थी बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, मज़ा आ गया सच में। और वैसे आज का मौसम भी कुछ कम हसीन नहीं है, जब मैं आई तो आंधी और बारिश ने मेरा वेलकम किया और लेकिन मौसम सुहाना हो गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस सुहाने मौसम में ये खूबसूरत शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही, आपकी यादों का कारवां समेटते हुए आगे बढ़ेगा। कुछ खट्टी मीठी यादों का कारवां आप भी मेरे साथ जोड़िए, अपने मैसेजेस के ज़रिए से बताइए कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं। फिलहाल जो सुन रहे हैं और जो जुड़ गए हैं उनका जिक्र करना तो बनता है। शुभ संध्या रेडियो सखी सप्रेम नमस्कार। वाह इतनी अच्छी उर्दू, सॉरी इतनी अच्छी हिंदी आजकल कहाँ देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती है। उर्दू मैंने इसलिए कहा क्योंकि उर्दू का ही जो नेक्स्ट शो रहेगा आपके साथ रहेगा। कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा है, यानी प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, आपकी याद आती रही गाने भी पसंद आ रहे हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से हमारे साथ हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम गुप्ता और

सुंदरम गुप्ता, तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रेगुलर लिसनर जिनका नाम है प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुराग आदर्श नगर से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच मैम, बेहतरीन सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, चलिए बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आरजे सभी नकवी मैडम।

क्या बाकायदा मूवी का नाम, सिंगर्स का नाम और बाकी सारी डिटेल भी मुझे लिखकर भेज देते हैं तो काम मेरा आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। चलिए कुछ और बातों के साथ और कुछ और मैसेजेस के साथ हम जुड़ेंगे, बस कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल आप एंजॉय करिए 90s के इरा से जुड़ा ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ, यादें। यादें वो खूबसूरत कारवां है जो इंसान के साथ ताउम्र यानी पूरी लाइफ टाइम चलता है। यादें सहेज कर रखें तो खूबसूरत, और भुला दें तो एक ऐसी यादें जो आपके लिए अमिट बन जाती हैं। यादें वो खूबसूरत सहेली, सखी, फ्रेंड, हम सफ़र, हम नवा, जो भी आप नाम देना चाहें, वो हैं जो आपके साथ साथ से साथ, कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलती हैं। अगर हम अपनी उम्र को ही मापें, अलग अलग अपनी एज की बात करें, तो कभी बचपन की यादें साथ होती हैं, तो कभी आपकी खूबसूरत यंग एज की यादें, कॉलेज की यादें, स्कूल की यादें साथ होती हैं, तो कभी एक ऐसा भी वक्त आता है, समय आता है जब आपके साथ जुड़ जाती हैं किसी और की यादें, यानी आप अपनी मैरिड लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और एक और खूबसूरत हमसफ़र आपके साथ जुड़ जाता है, और वो हमसफ़र अपने साथ अपनी ढेर सारी यादें ले आता है, और आपके साथ भी उसकी कुछ यादें खूबसूरत यादों के तौर पर जुड़ जाती हैं। अब आप अपनी यादें उसके साथ साझा करें या वो अपनी यादें आपके साथ साझा करें, मतलब एक ही निकलता है, खूबसूरत लाइफ मेंटेन करना। और जो ये फ़लसफ़ा, जो ये मंत्र समझ जाता है जनाब, उसकी लाइफ तो सेट हो ही जाती है। फ़िलहाल तो लाइफ यहाँ मेरी भी सेट हो रही है। कैसे? क्योंकि आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँच चुके हैं और बता रहे हैं आप कि कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो जुड़ चुके हैं लोग, उनका जिक्र करना तो बनता है। जी हाँ, एक ऐसे खूबसूरत जिसका हेरिटेज बहुत मशहूर है। जी हाँ, एक तो लखनऊ मशहूर है अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए, और एक नवाब रामपुर भी मशहूर है अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए, अपने हेरिटेज के लिए। जी हाँ, नवाब रामपुर अगर आप गए हों, और अब मैं भी कहीं ना कहीं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो जब आप जाएँगे तो अपनी आँखों में ज़रूर समा पाएंगे। वहीं से एक मैसेज हमारे पास आया है, और वो लोग भी हमारा ये शो सुन रहे हैं, और ख़ासकर 90s के जो म्यूज़िक है उसके ये सब फैंस हैं, तो इन्हें शो ख़ास तौर पर पसंद आ रहा है। रामपुर यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदर साहब, और इसी के साथ इनके कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग भी हैं जो ये शो सुन रहे हैं, पुनीत पूर्वी, और इसी के साथ दिलशान चौधरी, आदित्य पांडे, ये सब मिलकर फ़िलहाल हमारे शो इन्जॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, गाने भी आप अच्छे प्ले कर रही हैं, तो हमारा ये मैसेज भी अगर आप शामिल करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि हैदर, पुनीत और दिलशान चौधरी जी, और साथ ही आदित्य पांडे, ये जो फ्रेंड सर्कल मिलकर हमारा शो सुन रहा है, वो अपना नाम हमारे इस शो में सुनकर खुश हो गए होंगे। वेल, चलिए एंजॉय करिए हमारे साथ, और हमारा ये जो शो है इसी तरह आप सुनते रहें। चलिए अब उनका मैसेज ले लेते हैं जो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। जी हाँ, है तो रेगुलर लिसनर, लेकिन नाराज़ होने की अदा उनकी भी अनोखी है। चलिए उनका भी मैसेज शामिल करते हैं। यादों का खंजर दिल में उतर जाता है, हर बीता मंजर आँखों में ठहर जाता है, सरफराज लाख छुपाओ दर्द ज़माने से, पुराना ज़ख्म है अक्सर यादों में उभर आता है। ये लिखा है मोहम्मद सरफराज आलम साहब ने, जो कि हार्ड दर्शना बाज़ार अररिया बिहार से, और आज इनकी शिकायत मुझे लगता है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि हमेशा इनका ये शिकवा मुझसे रहता है कि भाई आप मेरा मैसेज पूरा नहीं पढ़ती, चाहे मेरे पास वक्त हो ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका मैसेज पूरा पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है सरफराज जी, आपका जो शिकायत है वो ज़रूर कम हो गई होगी। फरेबों ने हमको रुलाया कभी कभी, तेरी यादों ने हमको सताया कभी कभी, देखा जो बुझ रहे हैं उम्मीदों के चराग, ऐसे में हमने दिल को जलाया कभी कभी। ये लिखा है प्रेमचंद प्रेमी साहब ने धामपुर से, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। इसी के साथ आरजे सबिहा, आदाब, वालेकुम आदाब, आप अपनी मम्मा के पास किस शहर में गई थी? बेशुमार यादों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके साथ। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान साहब, फैजी, फरहान, फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, यानी पूरी फैमिली मिलकर हमारे साथ इस शो में लगातार शामिल है। मदीहा सुल्ताना से हमारे साथ, जम्मू और कश्मीर रजौरी से, आप बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले कर रही हैं, थैंक यू सो मच। ये हैं मदीहा और सुल्ताना, जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, खूबसूरत वादियों के शहर से हमारे साथ खुशबुओं में लिपट कर ये मैसेज आया है, तो वेलकम है आपका भी हमारे शो में। फिलहाल ये गाना प्ले कर देती हूँ, 90s का जो म्यूज़िक है वो भी तो आपको

हम तक पहुंचाना है और हमें आप तक पहुंचाना है, तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाइए और मैं आपको खूबसूरत 90s से जो गाने चुनाए हैं मैंने, जो सेलेक्ट किए हैं, वो पहुंचाती हूँ। जल्दी से लौट के आती हूँ, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज़, अर्जे सभी अनकवी को, शो आपकी याद आती रही मैं।

वल दोस्तों, खोए रहिए और सराहते रहिए और समझाते रहिए अपने दिल को कि इस खूबसूरत मौसम में अगर आप किसी के साथ हैं और इंजॉय कर रहे हैं 90s का म्यूज़िक और याद कर रहे हैं अपनी खूबसूरत यादों को, तो फिर क्या दिल का मौसम होना चाहिए। और मौसम भी आज सुहाना हो गया है, यानी हमारे दिल्ली में तो फिलहाल बड़ी बारिश और आंधी आई है। शाम आपके शहरों का क्या हाल है ये तो आप खुद ही बता सकते हैं मुझे, लेकिन हाँ यहाँ का मौसम फिलहाल बड़ा खूबसूरत हो गया है। और खूबसूरत मौसम पे मिजाज भी इंसान का, मूड भी इंसान का अपना आप ही अपना आप अच्छा हो जाता है और हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। कभी आपने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा मौसम में ख़राबी हो या चिलचिलाती हुई धूप हो, गर्मी हो, स्ट्रेस हो, तो इंसान मूड अपना आप ही ख़राब होने लगता है। वहीं कहीं अगर खूबसूरत बारिश की कुछ बूंदें ज़मीन पर पड़ जाएँ तो मूड में खुद ब खुद एक अच्छा पॉजिटिव जो पॉइंट है वो जुड़ जाता है। और ऐसा ही होता है, मुझे तो लगता है कि मूड से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इंसान के। और चलिए फिलहाल जुड़े हुए हैं आप भी, बता रहे हैं मुझे कि भाई सबीहा नहीं हो तुम अकेली, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और कौन कौन हैं जो साथ हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ, सौरभ अनेजा, आपने सबसे पहले मैसेज मुझ तक पहुँचाया हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और फिलहाल हमारे साथ कौन जुड़े हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीहा नकवी जी, प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहम्मद शहजाद सूरत गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो सबीहा नकवी मैडम जी, आप कैसी हैं? वल आपकी आवाज़ अच्छी है, थैंक यू सो मच। और आपका जो सॉन्ग सेलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज मुझे किसने किया था, आपने अपना नाम, हाँ नाम लिखा है शालू, शादीपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं हमेशा की तरह, बस इनका प्लीज़ लिखा गया है, मैसेज पढ़ लो। पढ़ लिया आपका मैसेज और आपको शो अच्छा लग रहा है ये भी जानकर अच्छा लगा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर राधे श्याम जी कासगंज से, गुड इवनिंग सबीहा, गुड इवनिंग टू यू, आप कैसे हो? वल मैं बिल्कुल ठीक, आप प्रोग्राम इतने मस्त सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो कि सुनकर तबीयत खुश हो रही है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। और गुड इवनिंग सबीहा, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही, प्रोग्राम लाजवाब चल रहा है, किधर संगीत हमें पसंद आ रहा है, ओके नाइस प्रेजेंटेशन। नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से हमारे साथ, नमस्ते सबीहा कैसी हो? बिल्कुल ठीक, सॉन्ग्स और प्रेजेंटेशन तो कमाल धमाल है ही, थैंक यू सो मच, आप खुश रहें, आप भी हमेशा खुश रहें। हेलो सबीहा मैम, मैं पुष्पा प्रसाद विकास की मदर, अच्छा ओके, अहमदाबाद से, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू, आपकी आवाज़ के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, जो अंदाज आपकी आवाज़ में है और कहाँ मन को बहुत सुकून मिलता है। बहुत गर्मी है वेल, आपको बता दें यहाँ पर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। और आप जो हमसे अपने दिल की बात पहुँचाती हैं और इतने खूबसूरत तरीके से आपने हम तक अपनी बात पहुँचाई, और मेरी भी मिजाज पूछा, अपना भी मिजाज बताया, अपने शहर का मिजाज बताया, और अहमदाबाद में तो मुझे लगता है गर्मी बढ़ती है, दुआ करूँगी कि अहमदाबाद में भी यही खूबसूरत मौसम हो जाए। थोड़ा सा ट्रांसफ़र करते हैं आपकी तरफ भी, और बिल्कुल आप हमेशा से मेरी हौसला अफजाई करती हैं पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल ये अगला गाना आपके लिए, जल्दी से लौट के आते हैं, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ वहाँ मुझे अपने चाहने वाले यानी आप सब नज़र आते हैं, तो ये गाना आप सभी को डेडिकेट करना चाहूँगी मैं।

अक्सर जो म्यूज़िक होता है यानी संगीत या फिर गीत या फिर गाने या फिर लिरिक्स, ये आपके दिल की बात को बखूबी बयां करने में बहुत कामयाब होते हैं। ये यूँ कहूँ कि आप ऐसी चीज़ें तलाशते हैं अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी में जो आपकी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए एक अच्छा माध्यम एक अच्छा ज़रिया साबित हो सके। इसमें म्यूज़िक अपनी बेहतरीन भूमिका एक खूबसूरत रोल निभा जाता है। कई बार जैसा जैसा आपकी लाइफ में हो रहा होता है ना, इसी तरह का म्यूज़िक आप सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसी ही यादें आप इकट्ठी भी करना पसंद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्यार में है, इश्क में है, किसी का नई नई मोहब्बत स्टार्ट हुई है, तो वो बड़े रोमांटिक बड़े खूबसूरत गाने एंजॉय करेगा और उसे ऐसे लगेगा जैसे आसपास सारी चीज़ें रोमांटिक हो रही हैं और उसका दिल भी खूबसूरत बातों से गुनगुना रहा है। वहीं अगर बाय चांस किसी कारणवश किसी का दिल टूट जाए या कोई आपको छोड़कर चला जाए या थोड़ी सी देर के लिए सही डिस्टेंस आ जाए, दूरियां आ जाए, तो वो बंदा इस तरह के म्यूज़िक को तलाशता है भाई जहां उसके दिल का दर्द बहुत अच्छे से बयां हो सके। यानी दिल टूटने वाले दिल तड़पाने वाले गाने जो हैं वो चुन चुन कर अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेता है और यादें भी उस वक्त वैसी ही बन जाती हैं। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि उस वक्त स्पेशली ऐसी यादों को अपनी लाइफ अपने जीवन में मेंटेन करें जो आपको एक पॉजिटिव साइन दे सके। अब होता तो हर किसी की लाइफ में है, डाउनफॉल हर किसी की लाइफ में आता है दोस्तों, लेकिन अगर आप खुद भी नेगेटिव रहेंगे और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अगर आप नेगेटिव कर लेंगे उस तरह की यादों को सोचकर, बातों को सोचकर, गानों को सोचकर, तो फिर तो सब कुछ लाइफ में जाना ही है, वैसे क्या हाथ आएगा आपके। इसीलिए नज़र जहाँ जहाँ जाए वहाँ पर खूबसूरत बातें नज़र आएँ, खूबसूरत यादें नज़र आएँ। मेरा तो खैर यही फंडा है लाइफ का। आपका क्या फंडा है ये आप मुझे अपने मैसेजेस के ज़रिए से लगातार बता रहे हैं। एक नए लिसनर आज हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनका मैसेज तो शामिल करना ज़रूर बनता है क्योंकि भाई पहली बार हमारे शो में शामिल हुए हैं तो हम उनको निराश नहीं कर सकते और उनको वेलकम ज़रूर देंगे। चलिए, आरजे सबिया नकवी जी, खराज तहसीन, लफ्ज़ों में मिठास हो तो दिलों तक असर जाता है, अंदाजे बयां खूबसूरत हो तो हर सफ़र यादगार बन जाता है। शुक्रिया जनाब। एफएम रेनबो इंडिया के मकबूल आरजे सबिया नकवी जी ओके को बहुत प्यार भरा आदाब ओके। बेहद दिलनशी और पुरकशिश है आपकी आवाज़, खूबसूरत गुफ्तगु, नफासत भरा लहजा और समाइन से मोहब्बत भरा रवैया आपका मोहब्बत से भरपूर है। हर प्रोग्राम को आप यादगार बना देती हैं, आपकी आवाज़ में ऐसी कशिश है जो सुनने वालों को दिल की हद तक पहुंचा देती है। वल देखिए, आपका इतना लंबा और इतना खूबसूरत मैसेज है प्यार से भरपूर कि मुझे भी थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी सी अंदर ही अंदर गला जो है थोड़ा रूठ गया था। हाँ, तो आगे लिखते हैं जनाब कि आपकी आवाज़ में ऐसी कशिश है जो सुनने वालों के दिलों तक पहुँचती है, हर लम्हे को खुशनुमा बना देती है। हम शानदार पेशकश के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। शुक्रिया, आपकी आवाज़ से महक उठती हैं फिजाएँ, आपके लहजे से सजती हैं महफिलों की अदाएं, यूं ही रोशन रहे आपका फन और आपका नाम, दुआ है बुलंदियों को छूती रहे आपकी सदाएं। ये कह रहे हैं सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, करूला मुरादाबाद से अयूब खान साहब। बेहद शुक्रिया जनाब आपका कि आपने इतने प्यारे मैसेजेस और इतनी खूबसूरत नेक दुआओं से मुझे नवाजा। थैंक यू सो मच, आपकी इन्हीं नेक दुआओं की मुंतज़र रहती हूँ मैं हमेशा और आप भी मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ, ये खूबसूरत शायरी और इससे जुड़े खूबसूरत जज्बातों का दौर जारी रहेगा रात 11:05 से फिर से बज़्म रंगे महफिल में, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। लवली मौसम इन दिनों चंडीगढ़ में है, विनीत कुकरेजा जी बोल रहे हैं और मुझे अभी मैसेज नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ राजेश भल्ला जी भी जुड़े थे मेरठ से, कंकड़खेड़ा मेरठ से। गुड इवनिंग आरजे लव गुरु सबिहा, तुमसे मिलकर यह एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं हमारे साथ गेटा कैलाश से, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और मैसेजेस के साथ फिर से मिलूंगी आपके पास, लेकिन फ़िलहाल आपको ये गाना पहुँचा जल्दी से लौट के आती हूँ, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी को अपने फेवरेट डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही।

जी हाँ, ये तो गाना था और गाना भी बहुत खूबसूरत। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर और दिव्या भारती अल्टीमेट एक्ट्रेस रही हैं हमारी इंडस्ट्री की। क्या खूब गाने और क्या खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने अपनी अदायगी का जादू जगाया, लेकिन बहुत कम समय के लिए इस इंडस्ट्री में वो रहीं। लेकिन जितनी भी रहीं, जितनी भी फिल्में उन्होंने दी हमें, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग, उनकी अदायगी, सब कुछ हमें हमारी यादों में बिल्कुल से संभाल कर हमने रखा हुआ है। और मुझे लगता है लाइफ टाइम ये यादें, खूबसूरत यादें, उनसे जुड़ी हुई भी हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और इंसान चला जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी यादें हमेशा आपके दिल में महफूज हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। भाई, इंसान अगर दुनिया में आया है तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि मरना बरहक है, यानी जिसने जन्म लिया है, जो उस दुनिया में आया है, उसे एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी लोग रहे हैं जो अब साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। अगर बात करूं मैं अपने फादर की और अगर बात करूं मैं अपनी भाभी की, तो वो दोनों ही अब मेरी लाइफ में और मेरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और ऐसा लगता है कि कदम कदम पर वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी बड़ी जो बात है वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इंसान चला जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी अच्छी यादें, उसकी अच्छी बातें हमेशा आपके साथ रह जाती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में भी नहीं रहे, जैसे कि कोरोना एक ऐसा कह सकते हैं कि एक इस तरह का दौर आया जिसने हमसे बहुत कुछ छीना, बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे अजीज़ व अक़रबा हमसे छिन गए, लेकिन वो भी सिखा के गया, बता के गया और यादों को एक खूबसूरत कारवां देकर गया। चलिए, ये थोड़ा सा इमोशनल मैं चली जाती हूँ, जब यादें मुझसे जुड़ जाती हैं तो पता नहीं क्यों मैं किसी एक और ही ट्रैक पे चली जाती हूँ। फिलहाल ट्रैक से वापस आते हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ हैं शांति नगर सोनीपत से। सादर प्रणाम। ओके, इतनी अच्छी, इतनी शुद्ध हिंदी जब मैं सुनती हूँ ना, मैं सोचती हूँ भाई मेरी हिंदी बहुत ही बुरी है। चलिए, अति उत्तम प्रस्तुति, 90s के ज़बरदस्त गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको दिल से शुभकामनाएं, जीवन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच, कोटि कोटि।

धन्यवाद। ये हाँ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पुष्पा जी मुझे कह रही हैं शुक्रिया। तो चलिए आपका मैसेज शामिल हो गया, इसके लिए थैंक यू कह रही हूँ, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, एक ही दिन में दो चीज़ें होती हैं, किस्मत और जो हम बदल नहीं सकते, और मैं दूसरी चीज़ कर लेता हूँ कि अपने दिन को अच्छा बिता लेता हूँ। किस्मत किस्मत जाने, ये कह रहे हैं हांडा साहब हैं शायद, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, पहले मैं माफ़ी मांग लेती हूँ भाई, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किस्मत को किस्मत पर छोड़ देना चाहिए और जो हमारे अपने पर्सनल एफर्ट्स हैं वो तो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। रविंद्र कुमार गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी पसंद आ रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। और एक बार फिर सरफराज आलम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चलिए आपने मेरा शुक्रिया तो माना। गुड इवनिंग मनोज कुमार यूपी हरदोई से हमारे साथ हैं, दिल्ली से अच्छा ये फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है कि उस फिल्म से गाना सुना दीजिए, लेकिन सॉरी सर ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो तो नहीं है इसलिए गाना तो मैं नहीं सुना पाऊँगी आपको। गुड इवनिंग मैम। सृष्टि कुमारी पटना से हमारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारी तरफ तो, लेकिन आपकी आवाज़ दिल को खुश कर रही है, सॉन्ग सुनकर अच्छा लग रहा है और किचन में सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं गाने गुनगुनाते हुए, इसलिए आपको थैंक यू सो मच कि आपके काम जल्दी जल्दी निमट रहे हैं। म्यूज़िक के साथ फ़िलहाल इन्जॉय करते रहिए। इन्जॉय करने के लिए जुड़े रहना है मेरे साथ, सुनते रहना है अपना डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही। आप बने हुए हैं मेरे साथ दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर, हम हैं आपके पास, साथ ही साथ पूरा इंडिया हमारे साथ हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दिल की आवाज़ और जिस सभी नकवी 90s के म्यूज़िक के साथ खूबसूरत आपकी यादों का सफ़र ये शो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 90s में मुझे लगता है कि हार्ड कॉर ये 90s के वो ज़बरदस्त ट्रैक हैं जो मैं यहाँ प्ले कर रही हूँ, जो 90s में हमने खूब बैक टू बैक लूप पे सुने। तो चलिए एंजॉय करिए हमारे साथ, और ये गाना तो आपको बहुत कुछ याद दिलाने वाला है अपनी लाइफ में।

वेल दोस्तों, उसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहूंगी आपसे वही एक खास बात कि ठीक 11:05 पर फिर से जुड़ेंगे मौसीकी की महफिल, रंगे महफिल में। आपके पास कहीं नहीं जाना है आपको जनाब, इसी तरह जुड़े रहना है मेरे साथ। और फिलहाल जाते जाते आपके लिए ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, और जाते जाते बता दूं कि विनोद कुकरेजा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, इनको भी हमारा शो बहुत पसंद आया। और कुछ और मैसेजेस जो मैं जल्दी जल्दी शामिल कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। पारस चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, ब्यूटीफुल 90s के शोज आप प्ले कर रही हैं। जबरदस्त बारिश हुई है यहाँ पर, वो कह रहे हैं चलिए बारिश आपकी तरफ भी हो गई, बहुत बहुत दिल खुश हुआ ये जानकर। और भाई मुझे लगता है मैंने सारे मैसेजेस शामिल कर लिए जो आपने अपने फीडबैक के तौर पे मुझे दिए। फिलहाल तो मैं कहूंगी आपसे वही खास बात कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद खास। बज़्मे रंगे महफिल में ठीक 11:05 पर फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, सिर्फ इस वक्त के लिए गुड नाइट नहीं बल्कि गुड टेक केयर, बाय बाय। बस इस मुलाकात के लिए ये गाना आप सभी के डेडिकेट करती हूँ मैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका

0: में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की बारिश होने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांगस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल हुए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग

0: जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमार से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर मकदम है नाज़रीन हज़रात, बज़्म रंगे महफिल में आप हैं अपने दिल की आवाज़। जी हाँ, वही आवाज़ जिसकी नन्ही सी खूबसूरत और आप से ज़्यादा प्यारी महफूज सूरत। जी हाँ, ये कोशिश है कि आपके दिल के किसी कोने में महफूज हूँ मैं। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़, आपकी मेज़बान दोस्त सभिया नकवी। दिल की गहराइयों से आप सभी का तहे दिल से खुशामदीद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का बज़्म रंगे महफिल की इस खूबसूरत शाम में, जहाँ हम और आप मौसीकी के अनगिनत रंग बिखेरेंगे। जी हाँ, उर्दू शायरी के साथ साथ आपके और मेरे जज्बातों का समा, और साथ ही साथ हिंदी फिल्म सिनेमा के जो खूबसूरत शाहकार हैं, जी हाँ, कुछ नगमे, कुछ ऐसे गीत जो आज भी अजर हैं, अमर हैं, कामयाब हैं और हमेशा रहेंगे महफूज हमारे दिलों में, कुछ इसी तरह इस मौसीकी की महफिल की जीनत को बढ़ाएंगे हम और आप मिलकर। तो बज़्म रंगे महफिल को रौनक और खुशबुओं से मुअत्तर करने के लिए और अपनी खूबसूरत बातों से इस शाम में रंग भरने के लिए बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि मेज़बान आ चुकी है आपके पास आपके साथ। वादे के मुताबिक, जैसे कि आप सभी से किया था मैंने वायदा, कि रहूँगी आप सभी की मुंतज़िर, और मुझे लगता है कि आप भी मेरे मुंतज़िर थे। वो बता रहे हैं आपके मैसेजेस जो मुझ तक पहुँच चुके हैं। जी हाँ, खुशामदीन खैर मकदम एक बार फिर से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ, मुल्क की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पर, मोबाइल ऐप और DTH के ज़रिए से भी हमारा और आपका रابطہ आपस में कायम है और कायम रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए जनाब, बज़्म रंगे महफिल की शुरुआत पहले इस खूबसूरत शाहकार के साथ, क्योंकि अगर साज़ तरानों का साथ हो तो मौसीकी का रंग कुछ अलग ही रंग नज़र आता है।

आवाज और मौसिकी की खूबसूरत रात, जब ये सब मिल जाते हैं ना जनाब, तो अपने आप समा खूबसूरत और रात हम मिजाज हो जाती है। मिजाज ऐसे कि जब आप किसी के मिजाज में अपनापन महसूस करने लगें, जब किसी के रंग में खुद को ढलता हुआ महसूस करने लगें, जब किसी की आंख नम हो और आपको लगे कि शायद आपकी आंखों में भी हल्की सी नमी

के साथ रहने का एहसास। एहसासों के नाम अलग अलग हो सकते हैं जनाब, कभी ये दोस्त की सूरत में आता है, कभी हम सफ़र, कभी हम नवा की सूरत में, कभी महबूब की सूरत में, लेकिन आता ज़रूर है। ज़िंदगी के किसी न किसी एक पड़ाव पर आपको ये कमी खलती है और जब ये कमी मुकम्मल हो जाती है तो लगता है कि ज़िंदगी जन्नत बन गई है। लेकिन उम्मीद का दामन हमेशा कहती हूँ कि थामे रखना है, क्योंकि क्या जाने कल कौन सी खूबसूरत उम्मीद आपके दरवाजे पर आपके लिए खटखटा रही हो। इसलिए अर्ज किया है जनाब कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि आ गया है हुनर मुझको मुस्कुराने का। जी हाँ जनाब, लाइफ यानी ज़िंदगी में अगर यही आप अपने रद्दे अमल रखते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी तरह का गैर अमल या किसी भी तरह का बुरा अमल आप पर असर नहीं कर सकता। आपको चारों जानब सिर्फ और सिर्फ खुशनुमा और ख़ूबसूरत बातें, यादें, मोहब्बत, रंग, नूर यही नज़र आता है। फ़िलहाल मुझे तो कुछ और भी नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमारे लिसनर्स जो हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने मेरे पास आ चुके हैं और हमेशा की तरह बेशुमार चाहतों का सिलसिला अपने साथ लेके आए हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, वो भी मेरे साथ इस खूबसूरत शाम में जुड़ चुके हैं। तो कौन है वो जनाब? हमेशा की तरह सौरभ अनेजा तो अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमा कुन्ना और यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, यानी विद फैमिली इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो लुत्फ अंदोज सिलसिला है जनाब, इसी तरह जारी रहेगा आपकी और मेरे साथ। मैं आपकी मुंतज़िर, मुख्तलिफ बातें लेकर मुसलसल आपके इंतज़ार में बज़्म रंगी महफिल की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हूँ तैयार। बने रहिए बज़्म रंगी महफिल में अपने दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी के साथ।

जी हाँ जनाब, मोहब्बत का वजूद अब का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। मोहब्बत आज के ज़माने से नहीं बल्कि एक ज़माने से चली आ रही है। इसके किरदार ज़रूर बदल जाते हैं, लेकिन इसकी जो शिद्दत है, इसका जो अकीदा है, इसका जो भरोसा है, इसमें जो वफा की चाशनी है, वो हमेशा कायम रहती है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत सिर्फ महबूब से की जाए। मोहब्बत के अलग अलग किरदार बदलते हैं और अलग अलग एहसास। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो खुदा हमें देता है, और कुछ मोहब्बतों को हम ज़मीन पे अपना आप चुन लेते हैं। इसीलिए तो ये खूबसूरत गाना जो भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये बयां कर रहा था उस रिश्ते को जो हम खून चुनते हैं। जी हाँ, अपने हमसफ़र, अपने हमनवा का रिश्ता। और बाज़ दफ़ा उस रिश्ते में बेहद कामयाब होते हैं, और बाज़ दफ़ा शायद कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन हमेशा कहती हूँ कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसीलिए हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खुदा खुश किस्मती से हमें निभाने के लिए तोहफे के तौर पर दे जाता है। खैर, एक शेर अर्ज कर रही हूँ फिलहाल, उसको लुत्फंदोज़ हुई उस शेर के साथ, कि नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, ये कौन आता है खुशबू को अपने संग लिए। जी हाँ जनाब, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो खुशबुओं को अपने साथ ले आते हैं। ऐसी खुशबू जो इंसान कभी नहीं भुला पाता, ऐसी खुशबू, ऐसा एहसास जिसको ताउम्र इंसान अपने पास रखना चाहता है, ऐसी ही खुशबू है माँ बाप की। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही फीलिंगफुल, बहुत ही इमोशन से, जज्बात से भरपूर एक मैसेज हमारे पास आया है, उसको ले लेते हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी, हमारी बिल्कुल नई नई सी, हमारी लिसनर कहें, हमारी फैमिली का एक न्यू मेम्बर कहें, वो जुड़ी हैं। ये है सारा तालिब, जो कि बेसिकली बिलोंग करती हैं यूपी बिजनौर से, लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में बस गई हैं। शाहीन बाग ओखला से हमें मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि हेलो सबीहा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कह रही हैं कि पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और फ़िलहाल यहीं दिल्ली में फ़िलहाल अपना क़याम कायम कर चुकी हूँ। और सबीहा, आपके शो के ज़रिए से एक प्यारा सा मैसेज है जो मैं अपने पेरेंट्स तक, अपने वालदैन तक, अपने माँ बाप तक पहुँचाना चाहती हूँ। और कुछ दिल की बातें हैं जो इंसान शायद कभी ज़्यादा खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म है FM का हमारे पास, इसके ज़रिए से कई बार बहुत सारी बातें इंसान अपनों को कह जाता है। तो जी हाँ, ये कह रही हैं कि सबीहा, मेरी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। हर किसी के माँ बाप देते हैं, और मुझे लगता है कि हर इंसान का अपने माँ बाप से एक अलग और लगता है कि बिल्कुल अनोखा रिश्ता होता है। ये कह रही हैं कि सबीहा, मेरी जो मदर हैं उनका नाम है फरजाना अफरोज़, और जो मेरे फ़ादर हैं उनका नाम है मिर्ज़ा तालिब बेग, और ये तीन बहनें और एक भाई हैं। अपना नाम तो मेंशन किया है, एक छोटी बहन भी है और एक और बहन है जो इनकी अब शादी के बाद बस चुकी हैं वेस्ट बंगाल में, जिनका नाम सैम है, जो यहाँ मेंशन करा है इन्होंने। और ये कह रही हैं कि सभी, आप बेसिकली बात यह है कि आपके ज़रिए से मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनके उस जज्बे के लिए, उनके उस हौसले के लिए जो ज़िंदगी भर उन्होंने मेरे लिए दिखाया है। ज़िंदगी की हर खुशी मुझे दी है और आज मुझे इतना कामयाब बनाया है कि आज मैं एक सेल्फ डिपेंड लड़की होकर दिल्ली में अपने लिए बहुत कुछ तलाश कर रही हूँ, और कई सारे ऐसे मौके भी हैं जो मुझे मिल भी चुके हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये पा भी चुकी हैं और एक कामयाब खूबसूरत लड़की के तौर पर अपनी ज़िंदगी को एस्टैब्लिश बनाने में लगी हैं। तो वेल सारा, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, और आपने कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और आपके ज़रिए से उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपके उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू जो मैं आज तक नहीं कह पाई, लेकिन उन सभी के लिए कहना चाहूँगी जो आपने मुझे दिया बिन मांगे। तो वेल, मुझे लगता है कि सारा, आपके पेरेंट्स तक आपका ये खूबसूरत और इमोशन से भरपूर मैसेज पहुँच गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इस मीठे से जेस्चर को ज़रूर फील करेंगे और आपकी इस मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। खैर चलिए सारा, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा हमारे साथ, और हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे।

जनाब, ऐसी ख्वाहिश वही कर सकता है जो हद दर्जा आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपको किसी के साथ बांट ना सके, आपको किसी के साथ साझा ना कर सके। और हमेशा कहा जाता है कि मोहब्बत करें तो बेहतरीन और लाजवाब करें, वरना मोहब्बत में रखा ही क्या है, बेशुमार गम और अनगिनत रुसवाइयाँ। लेकिन जब मोहब्बत, प्यार, इश्क किसी से करें तो ऐसा करें कि दूसरे को इतनी इज्जत दें कि उसको आपकी मोहब्बत पर फख्र महसूस होने लगे। कुछ खुशनसीब लोग हैं ऐसे जो ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, और वहीं कुछ बदनसीब लोग मोहब्बत की कदर नहीं समझते। शायद ऐसे लोग दूसरे इंसान को अपने से कमतर महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद सामने वाला इंसान जो हमसे इस कदर मोहब्बत, या यूं कहूं कि इस हद शिद्दत से मोहब्बत कर रहा है, तो शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन जनाब, ये कमी नहीं बल्कि आप उसकी ज़िद या आप उसकी बेतहाशा मोहब्बत का मरकज़ बन चुके हैं। इसलिए कद्र कीजिए उसके जज्बात की, क्या पता कल उससे बेहतर या उससे चाहने वाला आपको कभी नसीब ना हो। लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना भी नहीं है। ये इश्क व मोहब्बत की रवायत भी अजब है, ये इश्क व मोहब्बत की रवायत भी अजब है, पाना भी नहीं है उसे, खोना भी नहीं है। चलिए हुजूर, आप ना खो जाएं, मतलब आपके खूबसूरत पैगामात ना खो जाएं, उससे बेहतर है कि आप को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए, कुछ मैसेज जो मुझ तक पहुँचे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और हमेशा की तरह प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल कर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दानिश इकबाल खतौली से। सबीहा मैम, आप कैसी हैं? आपकी उर्दू बेहद अच्छी है और वॉइस तो है ही कमाल की, साथ ही साथ उर्दू बोलती आप बहुत अच्छी हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर।

और इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो सबिया, गुड इवनिंग टू यू। आपके प्रोग्राम का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही हूँ मैं, पुष्पा, अहमदाबाद गुजरात से। जैसे बहुत गर्मी में बारिश से राहत मिलती है, वैसे ही आपके प्रोग्राम से हमें सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन काफ़ी लंबा मैसेज सर आपने किया है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ छोटा मैसेज करें तो अच्छा लगेगा, फिर भी कोशिश करती हूँ आपकी मैसेज पढ़ने की। डियर आरजे सबिहा नकवी, आपकी बातें सुनकर दिल भर आया, ये दर्द दिल के बड़ा करीब है। अच्छा, जो मैंने से पहले वाले शो में अपनी बातें का जिक्र किया था उन्हीं को इन्होंने यहाँ दोहराया है, और बेहद अफसोस जाहिर किया है उन चीज़ों पर जो हम जिक्र कर रहे थे। चलिए, आपकी इस कंसर्न के लिए, आपकी इस तवज्जो के लिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद सरफराज आलम साहब, जो कि हाट दशरा बहार ज़िला अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। ये होता है, इंसान जब अपने दर्द में किसी का दर्द महसूस करता है ना, तो सच मानिए कि वो इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है। और आप सब दिल से बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे अपना मानते हैं। और मेरी खुशी, मेरे दर्द, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरे एहसास, मेरे इमोशंस को अपना मानकर बहुत कुछ लिख भेजते हैं। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत लेंथी मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन आपकी सारी बातें दिल तक पहुँचती हैं। फ़िलहाल आप तक पहुँच रहा है आज का ये अगला नगमा।

अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिलें।

जी हाँ हुजूर, दुनिया की रुसवाइयाँ और दुनिया के तानों से डरकर अक्सर रिश्ते दम तोड़ देते हैं। ऐसे रिश्ते जो शायद कमज़ोर नींव पर बने होते हैं, ऐसे रिश्ते जो शायद दुनिया से डरकर या रिश्तों में खोखलापन पाकर अपनी उम्मीदों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है जनाब कि ऐसे रिश्ते बनाने ही क्यों हैं, क्यों ना ऐसे रिश्तों को तामीर किया जाए जो मजबूत हों, जो आपके साथ ताक़यामत आपके पास रहें। ऐसे रिश्ते जिनमें ना कोई बेहयाई हो, ना बिछड़ने का डर, ना जुदाई का गम। ऐसे रिश्ते जो पाकीज़ा मोहब्बत पर दम भरते हों। ऐसे रिश्ते जो मोहब्बत के साथ मोहब्बत के साथ मोहब्बत पे फ़ख्र महसूस करा सकें। ऐसा ही रिश्ता तो है मेरा और आपका, खुलूस का, अकीदे का, मोहब्बत का, जज्बात का, एहसास का, जो आपके मैसेजेस के ज़रिए मुझ तक पहुँच रहे हैं। चलिए अब कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं, वरना हमारे सारे लिसनर्स कहेंगे सबीहा हमारे मैसेज की तरफ भी नज़र करम करिए। चलिए जनाब, गुड इवनिंग सबीहा, गुड इवनिंग टू यू सर, वेलकम टू द शो। रात की इस तरह में गज़लों का ये खूब जो आप प्रोग्राम दे रही हैं अपने शबाब पर है, हवाओं और फिजाओं में आपकी तैरती हुई खूबसूरत आवाज़ बेहद सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और कीशु रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज, एक बार फिर से अपनी शायरी यहाँ दर्ज करा दी है सरफराज आलम साहब, जोशी नहार दर्शना बहार जिला अररिया बिहार से। बिछड़ कर तुम उससे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाहों में आज भी है। भले ही मंजिलें अलग हो गई हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। बहुत खूब। बेशक गुले सुकून मेरे दिल में कोई खिले, मेरे चाके जिगर भी आकर एक बार वो सिले। न सागर तमाम याद कर यूँ सोख लूँ खुदाया, कि कतरा भी आंसुओं का मेरे यार को मिले, मेरे यार को ना मिले। प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत खूब। खैर आप तो हैं ही, किसे कहते हैं कि कलम के कलाकार, और अपनी खूबसूरत शायरी से, बातों से, अपनी अदायगी से आप हमेशा हम सबको लबरेज करते रहते हैं। तो बेहद शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने से। एक बार दानिश भी खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है दानिश आप भी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा और इस पाकीज़ा रिश्ते और इस पाकीज़ा मोहब्बत को अपने वजूद से महकाते रखिए।

खैर मकदम नाज़रीन हज़रात, आप सुन रहे हैं बज़्म रंगी महफ़िल अपने दिल की आवाज़ सभी हनकवी के साथ। खुश आमदीद आप सभी को एक बार फिर से बज़्म रंगी महफ़िल में। आज मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़ सभी हनकवी। लगातार जारी है बज़्म रंगी महफ़िल का ये कारवां 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में इस वक्त हम सुने जा रहे हैं, और मोबाइल ऐप और DTH के ज़रिए से भी हमारा और आपका सिलसिला, हमारा और आपका कारवां आपस में बना हुआ है।

सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, इतना रोए थे कि आंखों ने कयामत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मैंने बस इतना कहा मैंने मोहब्बत की थी। जी हुजूर, मोहब्बत को जितनी बुरी चीज़ लोगों ने आजकल बना दिया है, उतनी चीज़ बुरी है नहीं। अगर कायदे से की जाए और अकीदे से की जाए तो मोहब्बत से हसीन और ख़ूबसूरत शय और दुनिया में है नहीं। और हमारा ये जो शो है ये भी मोहब्बत पर ही बेस्ड है। जी हाँ, इसमें बातें की जाती हैं वो खूबसूरत जो आपके दिल को सुकून दे सके, आपकी ढलती हुई इस रात में आपकी दिन भर की जद्दोजहद को सुकून पहुंचा सके। इसीलिए मोहब्बत से ज़्यादा मीठी और ख़ूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अलग अलग किरदार अलग अलग मोहब्बत के तकाजे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान के इर्द गिर्द आप मोहब्बत को तलाशना शुरू करें। अपने दोस्तों में ढूंढने, अपने वालदैन में ढूंढें, अपने दोस्त अहबाबों में ढूंढें, अपने किसी ऐसे साथी में ढूंढें जो महबूब के दर्जे से अलग लेकिन दिल के बहुत करीब हो। इसीलिए मोहब्बत जिसमें ढूंढेंगे वैसे ही पालेंगे। और अगर अकीदे से मोहब्बत की जाए जनाब तो मोहब्बत ज़रूर कामयाब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दर्द, रुसवाइयाँ, बदनामियाँ, इस मोहब्बत में यही बचा है। जनाब ये नहीं बचा, इसमें वो सब कुछ बचा है जो आप दिल से महसूस करना चाहते हैं। अगर दिल से महसूस करेंगे तो इसमें वो सब है जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, यानी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए की पॉजिटिविटी, और आप सब जो एक दूसरे के लिए

ढूंढते हैं ना कि शायद कोई हमारे दिल की बात सुन ले, शायद कोई हमारे दिल का दर्द समझ ले, या कुछ पल कुछ लम्हे ही सही कोई इंसान रुककर हमारी भी तो सुने। तो अगर दुनिया में कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा दोस्त आपके लिए मुनक़हित या मुकर्रर है तो उसकी कद्र करें और उसे ज़िंदगी में हमेशा अपने पास रखें।

जी हाँ, ऐसे ही पास और ऐसे ही साथ मैंने भी आपकी सूरत में अपने तक रखा है, यानी आपके मैसेज, यानी आप। सौरभ अनेजा एक बार फिर से मेरे साथ हैं। आपकी शायरी कमाल होती है, ये तो नहीं बोलना चाहिए कि जिनके पास आपकी शायरी की तारीफ ही सुनना पसंद है। अच्छा, अरे आपके कुछ अलग ही जो मैसेज हैं वो चलते रहते हैं सौरभ। खैर, मैं जानती हूँ कि आप दिल से समझ रहे हैं और तारीफ़ भी करते हैं और सराहते भी हैं, न सिर्फ मुझे बल्कि यहाँ हमारे जितने भी आरजेज हैं, सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है। आप काफ़ी सारे लोगों को पसंद करते हैं और बहुत सारी जो हमारे लिसनर्स हैं सबको अलग अलग तौर पर हमें पसंद करते हैं, और हर किसी का रिश्ता हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल, और हमारा रिश्ता आप सब के साथ एक सा है, खुलूस का, मोहब्बत का, एहसास का। चलिए, सबीहा जी नमस्ते। हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बेमिसाल है और हमें फ़ख्र है आप पर, और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया। फ़िलहाल आप तक मैं यही पहुँचा सकती हूँ जो आप सुनेंगे।

सर दूर हो सर हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। सर दूर हो सर हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। तू कहाँ मिले तू कभी मिले तू कभी सही तू कहीं मिले। जी हाँ हुज़ूर, ये इंतज़ार भी खूबसूरत और मीठा लगता है जब किसी को दिल से चाहने की उम्मीद दिल में जाग जाती है। अगर मेरा ही इंतज़ार की बात करें तो जी हाँ, मुझे आपका भी इंतज़ार खूबसूरत और बेहशिद्दत से रहता है, क्योंकि इस इंतज़ार के बाद जो मिलने का लज्जत है ना, वो दोबाला हो जाती है जब ढेर सारे प्यार के साथ आप मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो जी हाँ जनाब, कुछ लिसनर्स पूछ रहे हैं कि सबिया, जाने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कि अगली मुलाकात कब हो रही है। तो जनाब, अगली मुलाकात में कुछ अरसे का इंतज़ार रहेगा या कुछ दिनों का इंतज़ार रहेगा, यानी अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह 7 जून को इसी शो में, यानी आपकी याद आती रही बज़्मे रंगे महफिल। 2 शो में हम मिलेंगे आपके पास, आपके साथ। और उससे पहले चलिए जो मैसेज मुझ तक पहुँचे हैं वो ले लेते हैं। हेलो सबिहा, सॉन्ग्स यानी गाने पसंद आ रहे हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पा जी ने भी अपना कंसर्न, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कंसर्न दिखाया मेरे लिए और बेहद मोहब्बत के लिए शुक्रिया। चलिए, ये कुछ लिसनर्स थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और बताया मुझे कि वो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपकी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया। हाँ, विजय कुमार नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से। नमस्ते सबिहा मैम, कैसी हैं आप? हमेशा की तरह सभी सॉन्ग, शायरी और प्रेजेंटेशन आपकी कमाल की रही, बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच सर। शब्बा खैर कह रहे हैं आप, आपको भी शब्बा खैर। और जाने से पहले कहूँगी वही एक बात कि इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आपको कोई भी फीडबैक, कोई भी राय देनी है तो बिल्कुल दे सकते हैं। जो ज़रियात हैं वो आप बिल्कुल से जानते हैं, बिंदास बोल में भी दे सकते हैं, मेल के ज़रिए से भी दे सकते हैं आप। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी वो कीमती राय का, जिसकी मुंतज़िर मैं हमेशा रहती हूँ जनाब। तो कहूँगी वही एक ख़ास बात कि अपना रखिएगा बेहद बेहद ख़ास ख्याल, क्योंकि आप हैं किसी के लिए बेहद ख़ास और वो ख़ास मैं हूँ। जी हाँ जनाब, अगली मुलाकात तक आपको ढेर सारा ख्याल रखना है, खूब अच्छे से खाना पीना है। अगर बारिश आपके शहर में हो तो उससे भी आपको लज्जत लेनी है, उससे भी इंजॉय करना है। और फिर मुझे खुलकर बताइएगा कि किस शहर में कितनी बारिश हुई और आपने कैसे इंजॉय, यानी कैसे आपने उसकी लज्जत ली। फ़िलहाल मुझे यानी अपने दिल की आवाज़ सबिहा नकवी को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कहूँगी खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जाते जाते ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए और बहुत सारा ख्याल आप सभी के लिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जाते जाते आप सभी के लिए ये आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री

से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के रॉन ताई और कैंग खाईचिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, हमारे श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 12:05 और 27 सेकंड्स, और ये है वक्त आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीरो आर शो का। तो कार्यक्रम में मैं रहूँगी आपके साथ, आपके साथ ही अलमास रज़ा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। बताइए साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो लीजिए, आनंद लीजिए इन प्यारे से गीतों का, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक के अंतर्गत।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 1 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप देश के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों से एक थे जिनके संसदीय और संवैधानिक विमर्श से जुड़े योगदानों ने समाज को समृद्ध किया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइकिन को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय आपको बताए देते हैं साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 1:05 और 28 सेकंड्स हुए हैं। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शीड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा।

है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ एफएम रेनबो के जरिए से 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 2:05 और 22 सेकेंड्स, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। ये कुछ खूबसूरत से गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वही आपके लिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं रहूँगी आपके साथ कार्यक्रम में अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्वणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खानाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमरीकी प्रतिनिधिमंडल भारत की 4 दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये 1 और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना

सकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने UNIFIL के साथ तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस हमले में मारे गए सर्बियाई शांति सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति सैनिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरल उपाय अपना सकता है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी

0: जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरान नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल द्वारा किए गए एक पोस्ट का खंडन किया है। इस पोस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना भारत के वित्त वर्ष 2026 के आईटी निर्यात डेटा से की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी या दावे को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से उसकी जांच अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगा और युवाओं के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।